0: શ્રોતા મિત્રો, બરાબર 6 વાગે આપ સાંભળશો દિલ્હીથી હિન્દીમાં સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં ફરહત નાઝ. मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है.
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया. सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है. पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है.
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है. इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है. सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी. उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही. भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं. भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई. मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय

0: मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12 से 15,000 रुपए हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM पर विविध भारतीनी विज्ञापन प्रसारण सेवानू आ अमदावाद केंद्र छे। प्रस्तुत छे प्रातकालीन भक्ति संगीतनो कार्यक्रम अर्चना।

नखा जैसी राक्षसी, कामांध स्त्री, मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई, पिता, पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है, अपने मन को रोक नहीं सकती। श्री राम ने लक्ष्मण को शूर्पणखा के कान और नाक काट देने का इंगित किया। लक्ष्मण ने स्वामी के आदेश का पालन किया। वो विलाप करती अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाकर उनके पौरुष को ललकारती है। शूर्पणखा के आहत होने का हाल सुनकर झुंड के झुंड राक्षस दौड़ पड़े। राक्षसों की सेना निकट आई देख श्री राम ने लक्ष्मण के साथ सीता जी को पर्वत कंदरा में भेजकर अपने धनुष पर वाण चढ़ाया। ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जैसे मतवाले हाथियों को आता देख सिंह उन्हें ताक रहा हो। श्री राम को देख राक्षसों की सेना चकित थकित रह गई। ऐसा सुंदर रूप उन्होंने कभी देखा न था, उन पर वाण कैसे छोड़ें। तब युद्ध न करने के उद्देश्य से खर दूषण ने श्री राम से उनकी स्त्री की मांग की।

0: सांध्यकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए राग मारवा। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को मेरा नमस्कार। पिछली बार हमने राग पूर्या के बारे में जानकारी हासिल की थी, आज मैं आपको थोड़ा कुछ राग मारवा के बारे में बता दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राग मारवा और राग पूर्या दोनों के स्वर एक ही हैं, लेकिन मारवा में जो है धैवत और ऋखभ इनको प्राधान्य दिया जाता है। इसमें ऋषभ कोमल है, मध्यम तीव्र है, अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं, जिस तरह राग पूर्या में भी हैं। वर्जित स्वर पंचम है, पूर्या में भी पंचम वर्जित है, सोहनी में भी पंचम वर्जित है, मारवा में भी पंचम वर्जित है। तो जैसा कि आपने देखा, मारवा, पूर्या और सोहनी एक ही स्वर लेके आते हैं, पंचम वर्जित, लेकिन इनमें संधि प्रकाश राग सिर्फ पूर्या और मारवा हैं। सोहनी रात के समय गाया जाता है। राग मारवा के बारे में हम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र, अन्य सभी

भी स्वर शुद्ध, पंचम वर्जित, जाति शाड़व, वादी स्वर इसका धैवत है और संवादी जो है ऋषभ। वादी संवादी के बारे में हम कह सकते हैं कि वादी हो जैसे कि एक राजा हो, उस राग का वो राजा है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर होता है। संवादी जो है वो उसकी पटरानी कह सकते हैं। तो मारवा में धैवत और ऋखभ, ये वादी संवादी एक दूसरे से के साथ संवाद करते हुए जब हम इनको बाकी स्वरों के साथ पेश करेंगे, तब जाके खूबसूरत मारवा हमारे सामने आएगा। धैवत और ऋषभ, इनको एक दूसरे के साथ संवाद करना बहुत जरूरी है। ये संधि प्रकाश रागों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत वीर रसपूर्ण राग है। इसका गायन समय आप सभी जानते हैं, सायंकाल सूर्यास्त के समय का राग है ये। आरोह इसका इस प्रकार है।

में धैवत और ऋखभ ये वादी संवादी एक दूसरे से के साथ संवाद करते हुए जब हम इनको बाकी स्वरों के साथ पेश करेंगे तब जाके खूबसूरत मारवा हमारे सामने आएगा। धैवत और ऋषभ, इनको एक दूसरे के साथ संवाद करना बहुत ज़रूरी है। ये संधि प्रकाश रागों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत वीर रसपूर्ण राग है। इसका गायन समय आप सभी जानते हैं, सायंकाल सूर्यास्त के समय का राग है ये। आरोह इसका इस प्रकार है।

जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये राग वीर रसपूर्ण है या रौद्र रसपूर्ण है, लेकिन कुछ गुणीजनों का कहना है कि ये राग बीभत्स रसपूर्ण है। कुछ भी हो, ये राग बहुत खूबसूरत है और बड़ा लोकप्रिय राग है, और आप देखेंगे कि काफ़ी सभाओं में, काफ़ी महफिलों में शाम के वक्त ये राग पेश किया जाता है और बहुत ही लोकप्रिय राग है ये। तो मारवा राग जो संधि प्रकाश राग है, उसमें आज मैं आपको एक बंदिश सुनाने जा रही हूँ। गुणीदास जी की बंदिश है ये, पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित जी की। हो गुनियन मिल गाओ बजाओ, सप्त सुरन के भेद सब मिल बखानो। हो गुनियन मिल गाओ बजाओ, ये बंदिश ताल एक ताल में निबद्ध है।

ये था राग मारवा का परिचय। अब प्रस्तुत है पंडित के महावीर की एक संगीत रचना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत की विरह अभिव्यक्ति को राग मारवा के स्वरों ने कितना असरदार बना दिया है, आप खुद ही सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला की चौथी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया सुप्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।
2: सखी सहेली दर मंगळवारे અને શુક્રવારે બપોરે 3 વાગે પ્રાયોજક દેવદર્શન ધૂપ અગરબત્તી।
3: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए। चालो घर अने ऑफिस मा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए। बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए। जलाशयों मा काप दूर करिए। वधु ने वधु वृक्षों वाविए। चालो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे की आवाज में मशाल फिल्म से कवि प्रदीप की रचना है और तर्ज बनाई है एसडी बर्मन ने।

0: इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आगे दीजिए। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: શ્રોતા મિત્રો, થોડી જ વારમાં આપ સાંભળશો હમ હે રાહી પ્યાર કે.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, हम हैं राही प्यार के. इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार.
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है. तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं.
3: जल छे तो आपनी चाहिए. चालो घर अने ऑफिस मा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनावीए. रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनावीए. बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए. जलाशयों मा काप दूर करिए. वधु ने वधु वृक्षों वावीए. चालो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर, किशोर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में दूसरा आदमी फिल्म के गाने के साथ। मजरूह सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम बुलंदी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 127,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
4: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और

0: पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहाँ तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्री गुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदीघोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रैंड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमासा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।

0: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
1: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
2: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और MSME को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ हैं महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर

0: लाते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है, अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल, अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मित्रों, जीवन में सच बोलना या सत्य के मार्ग पर चलना जितना कठिन है, झूठ उतना ही आसान। झूठ बोलना, थोड़ी थोड़ी बात पर झूठ का सहारा लेना और झूठ के सहारे एक और झूठ, फिर एक और झूठ, यानी झूठी बातें बनाना हम आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन सच कहना, सत्य बोलना और इस मार्ग पर चलना कुछ दरिया के बहाव को विपरीत दिशा देने जैसा ही है। सच की राह पर चलना मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन कोशिश करने से, जहन में ये बात रखने से कि हमें सत्य बोलना है, ये राह आसान हो जाती है। हाँ, इस आदत को बनाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है। सत्य।

सत्य हमेशा कटु लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन सत्य वचन हमारे जीवन की गति में सहायक होते हैं, जहां हम न चाहते हुए भी झूठ का सहारा लेते हैं और अपनी मर्जी से नहीं बल्कि समय का हवाला देते हुए झूठ बोलते हैं, तो कई बार इसके गंभीर परिणामों से भी हम अनभिज्ञ होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी आदतों से हम छुटकारा पा नहीं सकते, बस कोशिश करने की जरूरत है। सच बोलने की आदत न सिर्फ आपकी निष्ठा को अधिक बनाए रखती है बल्कि आपके व्यक्तित्व को एक प्रभावशाली दिशा भी दे सकती है।

सच्चाई और अच्छाई का अनुसरण करना हमारे जीवन को आसान बनाता है। कभी कभी परिणाम के डर से भी हम सत्य बोलने से कतराते हैं, जो आगे चलकर झूठ बोलने की आदत में बदल जाता है। सत्य वचन हमारे जीवन की ढाल की तरह होते हैं, पीछे छूट जाते हैं सभी अवसाद। सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में उजली किरण की तरह बिखर जाता है और जीवन में एक नया रंग भर देता है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए। चालो घर अने ऑफिस मा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए। बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए। जलाशयों मा काप दूर करिए। वधु ने वधु वृक्षो वाविए। चालो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
2: नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज़ों में जब तक है जान। इस फिल्म के गाने के साथ गुलजार के हैं बोल और तर्ज ए आर रहमान की।

जी हाँ दोस्तों, आपको इस गाने से याद आ ही गया होगा जो फैंस हैं, या अभिनेत्री कटरीना कैफ जी का जन्मदिवस है आज। हम विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं जीवित शरदा शतम। और उनकी ही फिल्म धूम 3 का आपको गाना सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए मीका सिंह और यो यो हनी सिंह की आवाज़ों में वेलकम बैक फिल्म का ये गाना।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह की आवाज़ में शुभ मंगल ज़्यादा सावधान फिल्म का गाना। गीतकार थे वायु और संगीतकार तनिष्क वायु। लीजिए अब सुनिए कुमार का लिखा और जतिंदर शाह का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की। फिल्म का नाम दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ। लीजिए सुनिए जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में जॉली LLB 2 फिल्म का गाना। जुनैद वसी हैं गीतकार और संगीतकार हैं चिरंतन भट्ट।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए नीति मोहन की आवाज में पद्मावत फिल्म का गाना। सिद्धार्थ गरिमा है गीतकार और संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

0: है
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
2: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म का गाना। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान, नीति मोहन और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गाना। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार विशाल शेखर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
6: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
5: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाज़ों में 102 नॉट आउट इस फिल्म से अमिताभ भट्टाचार्य के हैं बोल और तर्ज अमिताभ बच्चन की

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज़ को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाल दी।

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन।

इसके बाद फिल्म अपनी में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसकी ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

this rhyme. Let me do it, do it. साल 2012 में कैटरीना कैफ ने फिल्म अग्निपथ में काम किया और इस फिल्म में ये गाना उस साल खूब खूब

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आई विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

0: अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।
1: घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो।

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश कुखली।
1: आज के फनकार।
2: श्रोता मित्रों, थोड़ी ज वारमां आप सांभळशो मुख्य समाचार।

हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, ताल कहाँ, सम कहाँ, तुम कहाँ, हम कहाँ, तेरे कर तुम, नाल कर तुम, तेरे कर तुम, नाल कर तुम, हम तुम, नदासात, हिपासात, लतापात, पतापात, मेरा कस करामत,
1: ताते चिता, ताते चिता, ताते चिता,

लता मंगेशकर की आवाज़ में वर्मा मलिक का लिखा गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म महान। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं, अनजान की रचना आर डी बर्मन की तर्ज।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज़ में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और सखियों को आप सुन रहे थे फिल्म चिराग में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़ा नाखता पहला चेक नोता कर्या शू?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। हवे नजीकनी बैंक में जई फाटेली जूनी नोट्स बदलावो। जो बैंक ना पाड़े तो आरबीआई नी ओम्बुड्समैन ने फरियाद करो। आरबीआई कहे छे जानकार बनो सतर्क रहो।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ ही स्वागत करते हैं उन श्रोताओं का भी जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, यानी नए श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, गीतों की पुरवाई बनकर विविध भारती आपके घर आंगन तक पहुँचती है, तो शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का नायाब कार्यक्रम सुरीला सफर। चलिए चलते हैं साथ साथ इस सफर पर, देखते हैं कौन कौन से गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने तो पढ़ा ही है क्या इबारत हमने आज लिखी है, लेकिन रेडियो श्रोताओं के लिए भी हम पढ़ देते हैं आज की इबारत। धनक टूटी चंद्रमा की, सीने में बिखरने लगी, सीढ़ी देखी मैं चढ़ी तो हुस्न परी उतरने लगी, घटती गई उम्र बढ़ते हुए कदम के साथ, फिर लड़खड़ाया जो इस सीढ़ी पर बचपन, बढ़कर थाम लिया परी ने मेरा हाथ, नैन बदरा दिल भंवरा हुआ पास बिठाई कहने लगी, अपने ही घर में मेहमान की तरह आई, क्या बेघर हो गई कमाते कमाते, मेरे खामोशी सुन चुराते फूल कांटों की लड़ी चली, सब बेरंग फिर रंग हुआ कुछ यूं जादू की छड़ी चली, वक्त पीछे हुआ हम आगे जब चुराए आम ठाकुर के ताक में छुपा दिए, सीढ़ियों पर कभी बातें तो कभी पंच गट्टे का खेल, इन पर चढ़ती उतरती चंदन सी धूप को देखा, बारजे दरीचे यहीं झटकते जुल्फों से बूंद के मोती बरसे, और कभी छत पर चांद का झूमर देखा, मकान चढ़ के जिसपे हवेली हुआ, छुपी खेली भागी गिरी बिन साजन झूला झूल गई, कुछ यूं चढ़ी सीढ़ी मैं आज के उतरना ही भूल गई। तो ये थी श्रोताओं आज की इबारत, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमें अपने पसंदीदा जो शब्द इस इबारत में हैं उनके गीत लिखे हैं। तो आपको ये भी बताना है कि सीढ़ी से कौन कौन से गीत आपको याद आ रहे हैं, यानी जिन गीतों में सीढ़ियां भी दर्शाई गई हैं। वैसे सीढ़ियां जो हमें मंजिल तक पहुंचाती हैं, जिन पर उतरते चढ़ते खेलते, कभी तालाब के किनारे भी आपने देखा होगा कि सीढ़ियां बनी होती हैं, नदियों के किनारे सीढ़ियां होती हैं, यहां बैठकर कभी बातें करते तो कभी कॉलेज की सीढ़ियों में पढ़ते, समय बीत जाता है, यादें धुंधली पड़ जाती हैं, घरों की जिन पे वक्त बिताया सीढ़ियों पर, वो भी यादें धुंधली पड़ जाती हैं। तो उन घरों, उन छतों, उन सीढ़ियों को अक्सर जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, आज सुरीला सफर कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं ऐसे ही ऐसी ही बातों को और सीढ़ियों की यादों को। तो आप भी अपनी यादें हमसे साझा कीजिए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में एक बार फिर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर देखकर हमें बचपन के दिन याद आ गए हैं। और एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि दिल का भंवर करे पुकार, दम भर जो उधर मुँह फेरे। और एक शेर सुनाता हूँ और बहुत सारे गीत इन्होंने अपने पसंद के लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का जिक्र है। बाल्यकाल से यौवन तक का सफर और ढलती उम्र को उपमा के साथ दर्शाया गया है। स्मृतियों के वातायन में वातायन जब खुलते हैं तो जीवन का प्रथम पहर एक सुरम्य चित्रपटी की भांति उभर आता है। बचपन जीवन की वो भोर है जहां धूप भी मखमली लगती है। वह एक ऐसा कालखंड है जब समय तितलियों के पंखों पर बैठकर उड़ता है। जैसे कि कदम यौवन की दहलीज पर पड़ता है तो जीवन का आसान चटक रंगों से भर जाता है। आकांक्षाओं का उतुंग शिखर, एक चेतना का एक नया विस्तार छूने की बात होती है। बचपन हमें सहजता सिखाता है तो यौवन हमें संघर्षों से टकराने का साहस देता है। आज जब जीवन की ढलती शाम में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वो बचपन की नादानी और यौवन की रवानी ही थी जिसने हमारे भीतर के मनुष्य को जीवित रखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, इन पुरानी सीढ़ियों पर आज भी कदमों के वो अनगिनत निशान बाकी हैं जो कभी दौड़ भाग कर छुपने छुपाने की गवाही देते हैं। वक्त की धूप और छांव इन पर बैठकर ही तो गुजारी है। जब भी इन घुमावदार डंडों पर चढ़ती हूँ तो लगता है जैसे वक्त का पहिया उल्टा घूम गया।
1: FM 96.7 MHz पर विविध भारती ने विज्ञापन प्रसारण सेवानु अहमदाबाद केंद्र छे बराबर 1:20 सांभळशो समाचार।
2: चिंतल शाहना स्वरमा आगीत रचना।
0: ये बताएं श्रोताओं कि जब बीते दिनों की बातें हम करते हैं, जब सीढ़ियों की बातें करते हैं, जब उन घरों की बातें करते हैं जिनकी यादें जो हैं वो धुंधलके की तरह हो चुकी हैं, तो ऐसे घरों में वो कौन था जो आपको सबसे प्यारा लगता था और किसकी यादें सीढ़ी से वाबस्ता हैं आपको बतानी है।

ये कौन से अभिनेता हैं श्रोताओ जो पियानो पर नजर आते हैं? मुकेश की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे देवर फिल्म से, आनंद बख्शी के बोल थे रोशन की तरह से, और हमारे श्रोताओं ने जो पहले वाला गीत है उसे पहचाना है, मेरे महबूब फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर इबारत लिखी है आपने और हम अपने बचपन को याद कर रहे हैं जिसे हम बहुत दूर छोड़ आए हैं, अब तो बस यादें ही हैं। गाँव में जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक खेलते और जब मन करता तो गांव तालाब में डुबकी लगाते, बस यही काम रहता था उन दिनों। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज बचपन नादानियां और शरारतों पर आधारित गीत सुनवाए जाएंगे। एक और श्रोता ने लिखा है, चंदन सी चढ़ती उतरती धूप जीवन के उतार चढ़ाव सुख दुख धूप छांव की को परिभाषित करती है। चंदन शीतलता और महक का प्रतीक है जो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे सुख हो या फिर दुख, छांव हो या धूप, यदि आपने अपने मन को शांत और सुगंधित रखा जाए तो हर परिस्थिति में आनंद प्राप्त किया जा सकता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का पैराग्राफ समय की भागदौड़ में व्यस्त युवा लड़कियों की जिंदगी को बयान करता है। जिंदगी की आपाधापी में कब बचपन और उसके बाद किशोरावस्था निकल जाती है पता ही नहीं चला। आज फ्लैशबैक में वो गुजरा हुआ समय याद आ रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं, वक्त पीछे रह गया और हम आगे, ये वाक्यांश जीवन से जुड़े हैं, गहरे दार्शनिक पहलू को बयां कर रहा है। बीतते हुए वक्त के साथ बचपन जैसे जैसे पीछे छूटता है, इस पल में हम जो भी कर गुजरते हैं उसकी यादें पल पल हमारे साथ जुड़ती जाती हैं। बचपन के खेल संग साथी और बेखुशगवार क्षण या कोई दुख वाले लम्हे सभी हमारी यादों के गलियारे में दर्ज हुआ करते हैं। और ऐसे समय में अगर हम पीछे का समय थोड़ा सोचें तो सबसे अच्छा दोस्त कौन था? श्रोताओ, अगर आपको कोई दोस्त याद आता है जो आपके लिए, या घर का कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए एक सीढ़ी की तरह था, जिसकी बातें सुनकर या जिसकी बातें मानकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, तो ऐसी बातें भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और क्या आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला है? अभिनेता किन अभिनेत्री के बारे

जी अर्जुन की तर्ज थी। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत था। अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया ये गीत था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इंदिवर की रचना थी। और अगले गीत की डिटेल आपको बतानी है श्रोताओं, फिल्म का नाम बताना है और गायक कलाकार के नाम आपको बतानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ी से मुझे अपने मामा के यहाँ का घर याद आ गया, जहाँ हम बच्चे छुट्टियों में जाते थे और सुबह उठकर सब लोग सीढ़ियों पर लाइन से बैठ जाते थे, फिर वहीं बैठकर नाश्ता करते थे। जी हाँ, और इसी वजह से कि बच्चे तो सीढ़ियों पर ही खेलेंगे, उसकी साफ सफाई भी बहुत ही तरीके से की जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि पहले मकान बनाते समय पुराने लोग सीढ़ियां बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिससे फिसलन नहीं होती थी, पर आजकल सीढ़ियां बनाते समय मार्बल पत्थर और टाइल्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही खास बात है श्रोताओं। तो सीढ़ियों पर जब चलना होता है तो बड़ा संभल कर चलना होता है, और इसी वजह से जो पुराने घरों में सीढ़ियां बनाई जाती थी वो जरा रफ होती थी, उनकी सुंदरता चाहे उतनी ना होती हो लेकिन उनमें गिरने का खतरा मतलब सेहत से जुड़ा खतरा कम हुआ करता था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब फुर्सत के पल मिलते हैं, कुछ पल मिलते हैं, मैं चाय का प्याला लिए सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ। बस यूं ही बाहर के खूबसूरत नज़ारे, चारों ओर फैली हरियाली और बरसते बादलों को देखते हुए सुकून समेटने। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी नानी के घर में आंगन की दीवार से लगी सीढ़ी थी और दीवार के पार नीम का वृक्ष था जिस पर बहुत से पक्षी रहते थे। हम बस उसी सीढ़ी पर बैठकर उनको देखा करते थे। उनका कलरव सुनकर बहुत अच्छा लगता था। आपने क्या कुछ चुरा कर सीढ़ियों में चुपके चुपके खाया है, आप बता सकते हैं।

राज कपूर और रूतन पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे दिल ही तो है फिल्म से। और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, रोशन का संगीत था, साहिल ध्यानवी के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत एक छोटी सी कहानी के रूप में एक बेहद खूबसूरत और भावुक दृश्य काफ़े है। ये रचना बचपन, मासूमियत और वक्त के गुजरने के एहसास का एक मुकम्मल दस्तावेज है। यहाँ सीढ़ी को महज एक ढांचा नहीं बल्कि जीवन के सफर का एक जीवंत प्रतीक बना दिया है। ये रचना एक ऐसी जादुई छड़ी है जो वक्त के पहिए को पीछे घुमा देती है। इसमें जहां एक तरफ बड़े होने का अकेलापन है, वहीं दूसरी तरफ बचपन की यादों की वो गर्माहट जो इंसान को फिर से जीने की ताकत देती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल जब हम लौटते हैं अपने घरों की तरफ तो ये देखते हैं कि वो सीढ़ियाँ जिन पर कितना मतलब एक कह सकते हैं कि शोर सा रहता था, वो सीढ़ियाँ कैसी शांत पड़ी हुई हैं। और कई कई जगह तो ऐसा भी है कि ये सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। एक हमने आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, जॉय मुखर्जी के हाथ में ढोलक है और वो लकड़ी की सीढ़ी के तरफ होते हैं, तो ये गीत अगर आपको याद आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं। और सीढ़ियों पर फिल्माया गया कौन सा गीत आपको बहुत सुंदर लगता है? और एग्ज़ाम की पढ़ाई जब आप करते थे तो क्या आपने सीढ़ियों पर पढ़ाई की है, या फिर कॉलेज की जो यादें हैं वो आप साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कल्पनाओं की एक परी उतरेगी और फिर वो बचपन से जवानी तक ले जाएगी, इन दिनों उसकी मस्ती में हम कैसे कैसे पड़ाव पार करते आगे बढ़ते रहे, जीवन के विभिन्न आयाम में गुजरती ये शामें ये रातें, कैसे कैसे लोगों से मिलाते रहे। ऐसी कुछ बातें होंगी दोपहर के सुरीले सफ़र में सुनते हैं। तो जी हाँ, ऐसी ही बातें हैं और आप अपनी बातें साझा भी कर सकते हैं। अगले गीत में आपको बताना है कि ये जो सीढ़ी पर अभिनेत्री नज़र आ रही हैं ये कौन है।

0: સખી સહેલી દર મંગળવારે અને શુક્રવારે બપોરે 3 વાગે પ્રાયોજક દેવદર્શન ધૂપ અગરબત્તી
1: જરૂર સુનિયે શામ 4 બજે પિટારા ઇસ કાર્યક્રમ કે પ્રાયોજક હૈ AISSMS પુણે અ પ્રેમિયર હેરિટેજ ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સ
2: खूबसूरत तस्वीर बनती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत देखकर पढ़कर हम अपने बचपन के दिन हमें याद आए हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे ख्याल से ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम और भंवरा बड़ा नादान रे, ये सब गीत इन्होंने सुझाए हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पूरी इबादत में बचपन और शरारतें, घर आंगन सीढ़ियाँ हवेली छत झूला आम चुराना पंचगट्टे का खेल। हाँ, पंचगट्टे का खेल, ये खेल क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो हमें ज़रूर लिखें। वैसे आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं कि जो सीमेंट की बनी गिट्टियाँ होती हैं श्रोताओं, उनसे ये खेल खेला जाता है। तो क्या आपने खेला है हमें आप बता सकते हैं। चांदनी रातें लिखती हैं आगे, चांदनी रातें और समय के पीछे छूट जाने का एहसास बहुत खूबसूरती से उभर कर आता है। ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति अपने बचपन के घर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते यादों की दुनिया में लौट गया हो। तो इस गीत को पहचान जानिए आप और बताइए कि इस बार सीढ़ी पर कौन है।

फिरोज खान और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म औरत से, और इस गीत की डिटेल हमारे कुछ एक श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा वो ज़रूर हमें लिखकर भेजें। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में लकड़ी की सीढ़ियों से हम सब भाई जो हैं वो बैठकर फिसला करते थे, आज वो दिन बहुत याद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, हमारे पुराने घर की सीढ़ियाँ ऊपर मंजिल तक ऊंचाई तक थीं, बच्चे गिरे नहीं इसलिए सीढ़ियों के कोने पर लोहे की छोटी गेट बनवा के लगवाई थी ताकि बच्चे ऊपर जाएं तो गिरे नहीं। जी हाँ, सावधानी तो बहुत सीढ़ियों में बरतनी पड़ती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, जिसमें कुछ अवसर सीढ़ी का काम करते हैं और इसी के समानांतर कुछ घटनाएं सांप का काम करती हैं। इस तरह जिंदगी बसर होती चली जाती है। फिर है सुंदर सी सीढ़ी, और फिर है ये कौन सी सुंदर सी अभिनेत्री।

बिछाकर कच्ची अमियां उसमें भर लेते थे। दांतों का बुरा हाल हो जाता था, कई दिनों तक दांत चमक जाते थे, फिर अपनी चोरी पकड़ ली जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास सीढ़ियां हैं और बचपन में हम इन सीढ़ियों से उतर कर पानी लाते थे और मैं सबसे पहले पानी लेकर पहुँचती थी और हमेशा प्रथम आती थी। होड़ में अभी वो सीढ़ियाँ वहीं हैं, लेकिन जब मायके जाना होता है तो बचपन याद आता है। एक हमारी श्रोता हैं जिन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत को पहचाना है, लेकिन लिखती हैं कि गीत तो याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये गीत था, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक और श्रोता लिखते हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियाँ हैं, इन्हें पार करके ही प्रभु का दर्शन करते हैं। सभी की मनोकामना होती है, हे प्रभु 22 सीढ़ी पार करा देना। आज रथ यात्रा में भी भगवान 22 सीढ़ी उत्तर लोगों को दर्शन देने बाहर आए हैं। जय जगन्नाथ स्वामी।

मुकेश की आवाज़ में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना। मनीष और नूतन पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में घर में बिना बताए हम और हमारे चचेरे भाई बहनों की टोली के सारे भाई मिलकर आम के पेड़ पर चढ़कर निचली डाल को जोर से हिलाते थे और हम सारी बहनें नीचे

होता है तो बचपन याद आता है। एक हमारी श्रोता हैं जिन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत को पहचाना है, लेकिन लिखती हैं कि गीत तो याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये गीत था, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक और श्रोता लिखते हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियाँ हैं, इन्हें पार करके ही प्रभु का दर्शन करते हैं। सभी की मनोकामना होती है, हे प्रभु 22 सीढ़ी पार करा देना। आज रथ यात्रा में भी भगवान 22 सीढ़ी उत्तर लोगों को दर्शन देने बाहर आए हैं। जय जगन्नाथ स्वामी।

श्रोताओं, कॉलेज की सीढ़ियों का जिक्र आप कर सकते हैं। तालाब और नदियों के किनारे क्या आप घूमने गए हैं जहां खूब सारी सीढ़ियां होती हैं, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म राजकुमार का ये गीत साधना और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि लखनऊ की भूल भुलैया की सीढ़ी जहाँ किधर से भी चलो तो मिल जाएंगी सीढ़ियाँ, पर सच में भूल भुलैया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि चोरी चोरी खाने का मज़ा ही अलग है, अमरूद खाना नहीं भूलता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अधिक सीढ़ियों के बारे में कहीं स्विट्ज़रलैंड के बारे में इन्होंने लिखा है, नसीन पहाड़ पर हैं ये सीढ़ियाँ। और एक और श्रोता ने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का जो गीत था उसे पहचाना है। और एक और श्रोता लिखती हैं कि स्कूल पढ़ने के दौरान स्कूल कैंपस के पास ही बनी दुकान की सीढ़ियों में बैठकर खाना खाते थे, कॉलेज पढ़ने के दौरान कॉलेज की कैंटीन के पास ही एक मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर कोफ्ते समोसे और कचौरी खाए हैं खूब। जी हाँ, कई सारी दुकानें भी तो होती हैं वहाँ। आप अभिनेता और अभिनेत्री पहचाने?

शहनाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था, राजश्री और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था। इस गीत की डिटेल भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

मित्रों, जीवन में सच बोलना या सत्य के मार्ग पर चलना जितना कठिन है, झूठ उतना ही आसान। झूठ बोलना, थोड़ी थोड़ी बात पर झूठ का सहारा लेना और झूठ के सहारे एक और झूठ, फिर एक और झूठ, यानी झूठी बातें बनाना हम आसानी से सीख लेते हैं। लेकिन सच कहना, सत्य बोलना और इस मार्ग पर चलना कुछ दरिया के बहाव को विपरीत दिशा देने जैसा ही है। सच की राह पर चलना मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन कोशिश करने से, जहन में ये बात रखने से कि हमें सत्य बोलना है, ये राह आसान हो जाती है। हाँ, इस आदत को बनाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है।

सत्य हमेशा कटु लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन सत्य वचन हमारे जीवन की गति में सहायक होते हैं। जहां हम न चाहते हुए भी झूठ का सहारा लेते हैं और अपनी मर्जी से नहीं बल्कि समय का हवाला देते हुए झूठ बोलते हैं, तो कई बार इसके गंभीर परिणामों से भी हम अनभिज्ञ होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी आदतों से हम छुटकारा पा नहीं सकते, बस कोशिश करने की जरूरत है। सच बोलने की आदत न सिर्फ आपकी निष्ठा को अधिक बनाए रखती है बल्कि आपके व्यक्तित्व को एक प्रभावशाली दिशा भी दे सकती है।

सच्चाई और अच्छाई का अनुसरण करना हमारे जीवन को आसान बनाता है। कभी कभी परिणाम के डर से भी हम सत्य बोलने से कतराते हैं, जो आगे चलकर झूठ बोलने की आदत में बदल जाता है। सत्य वचन हमारे जीवन की ढाल की तरह होते हैं, पीछे छूट जाते हैं सभी अवसाद। सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में उजली किरण की तरह बिखर जाता है और जीवन में एक नया रंग भर देता है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
5: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए

0: सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स,
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमेरिकी डॉलर है।
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण हैं।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मा ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है।

0: न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा

0: द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल छे तो आपनी चाहिए, चलो घर अने ऑफिस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए, रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयों में काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षों वाविए, चलो आ वरसाद में कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
0: हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: શ્રોતા મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આવો હવે સાંભળીએ આરતી મુનશીના સ્વરમાં તુષાર શુક્લની શબ્દરચના, સંગીત શ્યામલ સૌમિલ મુનશીનું।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को और आरती आपको नमस्कार।
4: चंचल जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: तो भाई, आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं इस मंच पर और आज ढेर सारी बातें होंगी, आपस में भी होंगी और हमारे सुनने वालों से भी होंगी।
4: बिल्कुल, उनकी बातों को हम अच्छे, जिन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं उनको हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से उनसे बातें करेंगे और हमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनाएंगे।
3: तो भाई, वो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं सिर्फ वो श्रोता जिन्हें पता

0: है कि आज के विषय क्या हैं। हाँ। तो हम किस विषय पर बात करेंगे ये बताना भी बहुत ज़रूरी है।
1: बताना ज़रूरी है। तो आज हम सब बात करेंगे मनोरंजन के बदलते स्वरूप पर।
0: तो मनोरंजन की बात हो रही भाई, रेडियो की बात ना हो। मनोरंजन का बहुत पुराना और सबसे पसंदीदा जरिया है रेडियो, और हमारे जो श्रोता हैं वो तो जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मनोरंजन के माध्यम हैं उन्होंने अब तक क्या बदलते हुए देखा और उन्हें क्या लगता है कि ये स्वरूप अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना अपना हर किसी का देखने का नजरिया होता है।
1: जरूरी नहीं सिर्फ रेडियो हो, हम आपस में कितने खेल खेल के,
0: हाँ वही तो कहा ना,
1: आपस में बातें करके हम अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करते थे सब मिलके सखियों से बात करके। तो ये सब चीजें जो हैं पहले के जो साधन थे वो ज्यादा अच्छे थे या अभी के जो हैं वो ज्यादा आपको पसंद आते हैं, सब अपने आप नजरिया बताइए कौन सा आपको ज्यादा सही लगता है।
0: बिल्कुल, आज डिजिटल युग है तो डिजिटाइज चीजें जो हो रही है ना वो भी किसी को पसंद है किसी को नहीं है। जो पुराने दौर के व्यक्ति है ना उन्हें लगता है कि नहीं ये मोबाइल या जो गैजेट्स हैं उनसे तो अच्छा है अपने दोस्तों में बैठ के बातें करो।
1: बिल्कुल,
0: चार दोस्त मिल गए जो अगर सखियां हैं तो वो कुछ पकवान बनाएंगी, किटी पार्टी जैसा करेंगी, उनका मनोरंजन हो जाता है। बच्चों के लिए खेल कूद मनोरंजन है। तो आपके लिए मनोरंजन क्या है और आपने क्या स्वरूप बदलते हुए देखे, अपने विचार हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत यानुंग जामो लेगो जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जानते हैं अधिकतर लोग उनके बारे में।
0: मतलब ये ऐसे उपचार हैं कह सकते हैं कि इनके साइड इफेक्ट यानी कि आपको कुछ भी गलत उपचार मिलने की संभावना कम होती है, यानी कि जो चीज़ अगर आपने ली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है वो आपको फायदा ना दे लेकिन किसी तरह का नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती
1: है। प्राकृतिक उपचार होता है, तो प्रकृति तो वैसे ही इतनी ज़्यादा अपने अंदर समेटे हुए पूरा खजाना, तो उसको हम जान लें तो हम हमारे सारे चीज़ों का इलाज वैसे ही हो जाएगा।
0: आरती, आपने देखा है कितने लोग सिर्फ प्राकृतिक वाटर बॉटल्स में मंगा कर पीते हैं, पसंद करते हैं।
1: महंगी आती है वो, जो पानी मिलता है उन बॉटल्स में वो बहुत महंगा पानी आता है, तो आजकल शुद्ध पानी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो शुद्धता होती है जो प्रकृतिक चीजें जड़ी बूटियां होती हैं,
0: बिल्कुल
1: कुछ अलग ही।
0: तो शुद्ध हवा पानी अपने आप में बहुत कहते हैं कि एक दवा का काम करता है। इसके अलावा कुदरत ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, उनको पहचानना भी अपने आप में बड़ा काम है। तो जिन सखी की आज हम बात करने वाले हैं ये उनको पहचान कर उनसे उपचार करती हैं और बहुत सारे लोगों को ये अपने उपचार से स्वस्थ कर चुकी हैं।
1: बिल्कुल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज
0: जी।
1: और साथ ही हम बात करेंगे कि चंचल कुछ बताने जा रही हूँ,
0: दिमागी कसरत
1: भूल गई थोड़ा सा हमें दिमागी कसरत की ज़रूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो एकदम टंग ट्विस्टर होते हैं, एकदम हमारे जीभ को घुमा देते हैं पूरी। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से पहेलियाँ होती हैं, पहेलियाँ बुझाते हैं। पहले हम लोग का बहुत ज़्यादा ये मनपसंद खेल हुआ करता था कि हम कुछ ऐसी बातें कहें और बताएं बूझो तो जाने। अब ऐसी बात, हमने कुछ लाइन्स बोल दी, अब बूझो तो जाने इसका क्या मतलब है, इसका क्या, कौन सी चीज़ छिपी हुई इन शब्दों में। तो ये पहेलियां जो है ना इससे हमारा जो मस्तिष्क है ना उसके सारी बिल्कुल काम में लग जाता है, बिल्कुल कि ढूंढने क्या है क्या चीज।
0: और पहले बच्चों को ऐसे टास्क जब दिए जाते थे ना तो उनका दिमाग कहते हैं कि खुलता था इन चीजों से। तो आप करते हैं अपने बच्चों के साथ या नहीं करते हैं, बच्चों की दिमागी कसरत के लिए पहेलियों के अलावा आपने क्या किया है हमारे साथ जरूर साझा करें।
1: बच्चों के ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जब चीजें हम करते रहते हैं ना, चाहे वो अखबार में निकलने वाले उनको पहेलियों को सुलझाना हो या किस तरीके की चीजों को करना हो, तो इससे हमारा दिमाग जो है ना एकदम काम में लगा रहता है, एक्टिव रहता है। इससे ये होता है कि हम जैसे कभी कभी ऐसा होना था कि बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा सा याददाश्त में कमी होने लगती है, तो वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं।
0: और बारिश का मौसम है ये हम सभी जानते हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन बारिश के बाद जो उमस होती है ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान का, अपने पहनावे का, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब चीजों
1: का। वैसे भी कहा जाता है ना कि अब हम प्रकृति की बात करें तो कहा जाता है कि प्रकृति के हिसाब से हमें खान पान भी रखना चाहिए, कौन से मौसम में, हर मौसम का खान पान अलग होता है, तो उसी हिसाब से हम अपना खान पान रखेंगे, संतुलित आहार रखेंगे, शुद्ध पानी पियेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बारिश के दिनों में अपना ध्यान रखें।
0: और इसके अलावा भाई नींद बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन इस समय हम श्रोताओं की नींद उड़ाने वाले ताकि वो प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार रहें।

0: हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी और अब वो हमें कमेंट्स भेजेंगे,
1: पूरे ध्यान से प्रोग्राम को सुनेंगे
0: जी, और जो हमारे विषय हैं उन पर संदेश भी लिखकर भेजेंगे, अपने विचार भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मनोरंजन के जो बदलते स्वरूप हैं उन्हें लेकर, और बात जब मनोरंजन की होती है आरती, तो ये केवल समय बिताने का कोई साधन नहीं है बल्कि मानसिक तनाव को दूर करके ताजगी भरने वाला भी होता है और रचनात्मक और जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। बदलते समय के साथ मनोरंजन के साधन भी बदले हैं और इस बात से हमारे श्रोता भी वाकिफ होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और अतीत की तुलना वर्तमान से करें तो मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और पुराने समय का जो मनोरंजन था वो सामूहिकता, अपनापन और संस्कृति से अपनी जुड़ा हुआ था।
0: हाँ।
1: गांव की चौपालों पर किस्से कहानियां सुनाई जाती थी, लोकगीत और लोक नृत्य लोगों को एक सूत्र में बांध लेते थे, रामलीला, नौटंकी, कठपुतली का खेल, मेले, पारिवारिक

0: खेल जो है सब परिवार पूरा मिलके खेलते हैं हम लोग सब, और दादी नानी की कहानियाँ और रेडियो के कार्यक्रम जो थे वो उस समय के मनोरंजन के मुख्य माने जाते थे साधन।
1: और पहले के ज़माने की अगर बात हो रही है तो जैसे आजकल बहुत सारे बोर्ड के गेम भी मिलते हैं या पासे होते हैं उसमें, तो वो हम खुद ही किसी कोयले से या चौक से ज़मीन पर उसको काढ़ लिया करते थे और कुछ पत्थर वत्थर रख के बस पासे बनाकर उनसे खेला करते थे। तो इन चीज़ों में भी युग के साथ में बदलाव हुआ, फिर ये बोर्ड पर आने लगे बाज़ार में, और अब ये चीज़ें कई बार हमें डिजिटल यानी कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर टैब पर भी हम खेलते हैं।
0: अभी भी गाँव में देखिए तो छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं वो गुटके खेलती हुई दिखाई दे जाएंगी, वो बहुत अच्छे लगता है वो, और जो ज़मीन पर बनाते हैं पहले उससे चौक से और एक दो तीन चार करके
1: और वो लंगड़ी से चलते हुए खेलते हैं, कहीं दो पैर टिकाने हैं कहीं एक पैर टिकाना होता है।
0: इस तरह के खेल तो अभी भी बच्चे खेलते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं, लेकिन हाँ ये जो खेल थे ये पूरी तरह से हमें पूरे शरीर को भी एक्टिव रखते थे और दिमाग को भी एक्टिव रखते
1: और बिल्कुल इन माध्यमों में सिर्फ आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि संस्कार है, लोक ज्ञान है, सामाजिक मेल मिलाप, ये सभी चीजें आरती में समाहित होता था और मनोरंजन लोगों का एक दूसरे को और पास ले आता था। वहीं वर्तमान समय में मनोरंजन ने तकनीक का हाथ थाम लिया, जैसा हम बात कर ही रहे हैं, डिजिटल युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, वीडियो गेम, पॉडकास्ट, OTT, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया
0: बिल्कुल है। और आज का मनोरंजन हमारी उंगलियों की पहुंच में है, सबसे बड़ी बात एक क्लिक पर दुनिया भर की फिल्में, संगीत, पुस्तकें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम उपलब्ध हैं और इस बदलाव ने मनोरंजन को और अधिक सुलभ बना दिया है, विविध और व्यक्तिगत भी बना दिया है। अब हर आयु वर्ग अपनी रुचि के अनुसार सामग्री को चुन सकता है। यही कारण है कि मनोरंजन आज केवल आनंद का माध्यम नहीं है बल्कि शिक्षा, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास का भी सशक्त साधन बन गया है।
1: हम बातें और करेंगे और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं इस बारे में वो भी पढ़ेंगे, पर गीत सुनते चलें।
0: बिल्कुल।

0: अर्थ ये जो इस तरह के गीत हैं ना, ये भी दिल चुरा लेते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि बदलता जो स्वरूप है मनोरंजन का, तो देखो ना, हमने गीत सुना कितने गुजरे जमाने का था, लेकिन ये आज भी मीठा लगता है। और संगीत का स्वरूप भी कितना बदला है,
1: बहुत ज़्यादा बदल गया है। और बदलाव हर समझ लीजिए परिवर्तन जो होता है वो तो प्रकृति का नियम ही होता है, लेकिन वो परिवर्तन

0: अच्छा होना चाहिए जो सबको पसंद आए
1: जी। और परिवर्तन के साथ हम अगर जुड़ेंगे नहीं, खुद को अलग थलग रखेंगे तो वो खुद ही खामखा तकलीफ में रहेंगे। तो बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी होता है, लेकिन बदलाव के साथ बिल्कुल इतने ना बह जाएं कि अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसे हम भूल जाएं।
0: बस अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और बदलाव को अपने हिसाब से थोड़ा सा स्वीकार कीजिए।
1: और अपने बच्चों को भी जो अपनी संस्कृति है उसे अलग ना होने दीजिए। अब वो नई चीज़ों को, जो भी आधुनिकता है, उसे अपनाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उससे जुड़ाव बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल।
1: तो अब देखिए, हमारे श्रोता का कहना है कि विगत काल में मनोरंजन के साधन प्रकृति और सामुदायिक गतिविधियों तक सीमित थे। मेले, सर्कस, कठपुतली शो, त्योहारों में पूरा समाज एक साथ जुड़ जाया करता था। रेडियो और दूरदर्शन के आने से मनोरंजन घर की चार दीवारी तक सीमित हुआ, लेकिन इसे भी पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने का अवसर दिया। और तकनीकी क्रांति की बात कर रहे हैं, जहाँ इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है, वेब सीरीज़ आई हैं, आगे इन्होंने इसके बारे में बात की है। फिर ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल एजेंसी AI एल्गोरिदम आधारित जो सिफारिशें हैं, इसने भी व्यक्तिगत बना दिया है मनोरंजन को, और बहुत विविधतापूर्ण मनोरंजन अभी है। और बहुत विस्तार से इन्होंने बातें लिखी हैं इस बारे में, तो आगे और भी संदेश पढ़ने हैं हमें।
0: बिल्कुल। और हमारे एक क्वेश्चन होता है, उनका संदेश है कि मनोरंजन के साधन तो पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, पर कुछ तौर तरीके बदल गए हैं।
1: हाँ।
0: पहले रेडियो पर मनोरंजन हुआ करता था, पर आजकल तो मोबाइल फ़ोन पर बहुत सारे बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं, पर मनोरंजन का स्वरूप बदल गया है। पर मेरा मनोरंजन का स्वरूप पहले जैसा ही है, लगता है कुछ भी नहीं बदला है। मुझे वो पुराने रेडियो का दौर अच्छा लगता है, इस कारण जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मैं सिंपल पुराने रेडियो पर ही सुना करता हूँ, और मेरे लिए यही अच्छा है।
1: हमारे सुनने वाले श्रोता है ना, जो इतने पुराने गीत जो आज हम सुन रहे थे ना, ये अक्सर सुबह भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उन्हें सुनाई पड़ते होंगे।
0: हाँ।
1: तो आज एक बदलाव ये भी है उनके लिए। हाँ। कि इतने पुराने गीत आज सखी सहेली में उन्हें सुनाई पड़ रहे हैं। और क्या संदेश है?
0: एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मनोरंजन अधिक जो विविध है, त्वरित और सस्ता हो गया है। घर बैठे ज्ञान और मनोरंजन दोनों साथ में मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव इसका यह है कि मनोरंजन जो है वो अब सामाजिक से अधिक व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि पहले सारे लोग मिलके हम साथ होते थे। अब अत्यधिक स्क्रीन टाइम से शारीरिक गतिविधियाँ भी कम हुई हैं और आँखों पर बुरा असर भी पड़ रहा है।
1: हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, ये बहुत सही बात है कि बच्चों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, बड़ों की, और ना सिर्फ आंखों पर, आपकी और भी इंद्रियों को ये प्रभावित करते हैं। तो हमारे श्रोता खुद सजग हैं, इन बातों को जानते हैं, तो अपने घर में वो क्या इन चीज़ों को लेकर बदलाव करते हैं। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए क्या उन्होंने एक समय निर्धारित किया है, या बच्चे उनके बहुत कितनी बार तो हम खुद ही आदत बिगाड़ते हैं बच्चों की, कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो TV लगा दिया, या तो फिर हमने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया कि उसका ध्यान थोड़ा सा वहाँ से, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है वो टीवी और मोबाइल की तरफ, और हम उसके ध्यान को थोड़ा सा भटकाकर उसके मुंह में निवाले देते रहते हैं, और फिर वो चीज़ें आदत में बदल जाती हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। मनोरंजन देना है, लेकिन स्वस्थ मनोरंजन हमें अपने आगामी पीढ़ी को देना है।
0: और बच्चों को हमें समझाना भी है कि जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो, और खाने पर पूरा ध्यान रखते हैं, तो पुराने समय में क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जब हम हाथों से अपने खाना खाते हैं ना, तो एक जुड़ाव होता है खाने के साथ, उसकी सुगंध को महसूस करते हैं, उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तो वो खाना में और फायदा पहुंचाता है।
1: हाँ।
0: इसलिए जरूरी होता है कि जब कुछ ना चल रहा हो, उस समय टीवी मत चलाइए, उसमें कुछ नहीं करिए, कहते हैं बात भी बोलना भी नहीं चाहिए, तो खाते समय थोड़ा अगर इस तरीके से हम करें तो देखिए कितना स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
1: बहुत सही बात कही आरती आपने, कि हम एक एक स्वाद को महसूस कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान किसी और भी है, किसी तीसरी तरफ भी है, कि एक तरफ हमारी नजरें हैं इस तरफ की कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एक तरफ हम टीवी भी देख रहे हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर भी है, तो खाने का लुत्फ हम ले ही नहीं पाएंगे। और जितना असर हमें हर चीज़ को लेकर वो भोजन देगा, शायद नहीं दे पाए।
0: बिल्कुल। तो और हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं कि प्राचीन काल के सामूहिक उत्सवों से लेकर आज के व्यक्तिगत डिजिटल स्क्रीन तक मनोरंजन का स्वरूप काफ़ी बदल गया है। हालांकि इसका मूल उद्देश्य दिन भर की थकान मिटाना और मानसिक शांति पाना आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बस चीज़ें चेंज हो गई थोड़ी सी।
1: बिल्कुल। तो हम फिर से एक पुराने गाने की तरफ बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, बदलाव
1: और बदलाव हम लेकर आ रहे हैं, तो एक गीत सुनते हैं।
2: हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बड़ा खूबसूरत गीत था और दो बहनों की आवाजें थी, तो दिमागी कसरत की बात है भाई, हम आगे बात करेंगे लेकिन हमारे श्रोता पता है कौन सी दो बहनें हैं इस गाने में, थोड़ी सी दिमागी कसरत उनकी भी हो जाए
1: बिल्कुल।
0: और ये भी एक खेल ही हो गया ना, मनोरंजन का बदलता स्वरूप है ये।
1: बिल्कुल, मनोरंजन के स्वरूप ही की बातें कर रहे थे, जैसे कि हम पहले हम परिवार के साथ में हम अपनी हंसी को बांटते थे, खुशी को बांटते थे, अब आज कई क्या ऐसा
0: हम सोशल मीडिया पर बांटते हैं।
1: बिल्कुल, आज कई बार हंसी जो होती है वो हमारे जो इमोजी होते ना हाँ। वो बनकर मोबाइल स्क्रीन पर रह जाती है। पहले संवाद आमने सामने होते थे, अब आज वो डिजिटल माध्यमों से होते हैं। कभी पूरा परिवार साथ बैठकर रेडियो सुनता था या दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखता था, जबकि आज अक्सर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में फोन में बिजी दिखाई देता है।
0: और देखिए ना हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं, मनोरंजन के स्वरूप भले बदले हों, रेडियो ने हमें आज भी जकड़ रखा है। यानी कि रेडियो जो है ना वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं का मनोरंजन का बहुत पसंदीदा माध्यम है। आगे लिखते हैं कि रेडियो से पहले हमारे घर में ग्रामोफोन प्लेयर हुआ करता था,
1: अरे वाह,
0: जिस पर पुराने दौर की उन फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड बजाकर हम लुत्फ उठाया करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ साल 1960 में रेडियो का आगमन हुआ, उस समय से लेकर आज तक ये हमारे मनोरंजन का साथी बना हुआ है। इसके अलावा सिनेमाघर और दूरदर्शन का ज़माना आया, जिसमें हर रविवार के दिन आ रही रामायण जैसे सीरियल और शाम को आने वाली फिल्में हमें काफ़ी प्रभावित किया करती थी। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मनोरंजन को व्यक्तिगत और ऑन डिमांड बना दिया है। और आगे लिख रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
1: देखिए परिवर्तन तो होता ही है
0: जी,
1: अब हम उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। और हमारा एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बचपन में सबसे मज़ेदार एक और मनोरंजन का साधन था कथा कहानी सुनाने का। सच में घर परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो कथा कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे और आपको उसमें बीच में हुंकारी भरना ज़रूरी होता था। और कथा एक दिन में ख़त्म नहीं होती थी, दो दो दिन तक चलती थी। सुनने वाले की बातें इतनी लच्छेदार होती थी कि हम तन्मय होकर उस कथा को या कहानी को सुनते रह जाते थे।
0: और इसी तरह से हम बात करें कि बदलते स्वरूप की, तो पहले चिट्ठियां हमारे श्रोता लिखा करते थे, अब हमारे श्रोता हमें कमेंट लिखकर भेजते हैं। कुछ श्रोता सिर्फ अपने विचार, इस जिस जो भी बात हो रही है उस बारे में अपने विचार लिखते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल तैयार माध्यम मिल जाता है, वो गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं उस बारे में और बिल्कुल उसको वहाँ से कॉपी करके एज इट इज़ वैसा कि वैसा उसे पेस्ट कर देते हैं। उसमें आप अपने विचार भी जोड़िए और आपकी क्या बात है वो राय भी हमने लिख कर पहुंचाएं,
1: आपके विचार जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
0: तो ये तो हमें भी पता है, बिल्कुल गूगल पर सब तरह की जानकारी है, लेकिन आपको अपने विचार लिख कर भेजने, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना श्रोताओं से कि आप अपने विचार इस बारे में लिख कर भेजिए कि आपने क्या बदलते

0: देखा है इस दौर में,
1: जो आपके अनुभव है ना वो जब हम साझा करेंगे ना तो और लोगों तक भी वो जो अनुभव है वो पहुंचेंगे
0: जी।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि एक समय था जब लोग मेले, कठपुतली के शो, नाटकों और रेडियो पर निर्भर थे, इसके बाद सिनेमा घरों और टीवी का दौर आया, लेकिन अब जो है वो जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मनोरंजन के, जिन पे पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया गया है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे हम शाम को जब हमारा कोई सीरियल आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इंतज़ार कर रहे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि ऐसी ऐसी अब सीरीज हो गई हैं कि उनके एपिसोड ही चलते रहते हैं, तो ये बदलाव बता रहे हैं इस तरीके का हुआ है
0: बिल्कुल। और मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य मन को प्रसन्न करना होता है, तनाव को कम करना होता है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना होता है। आरती, अगर मनोरंजन हमें संवेदनशील, रचनात्मक और सकारात्मक बना रहा है तभी उसकी वास्तविकता हम कह सकते हैं कि वो सिद्ध होती है। इसीलिए हमें ऐसे मनोरंजन को अपनाना चाहिए जो ज्ञान भी दे, हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करता रहे।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम मनोरंजन के साधन को उस हिसाब से लें कि भाई हमें जो ज्ञान भी थोड़ा सा हमारा बढ़ाए।
0: बिल्कुल, समय तो बदलता रहेगा, मनोरंजन के स्वरूप भी बदलते रहेंगे, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे जीवन को आनंदमय और संतुलित, सार्थक बनाते रहना। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करके ही हम मनोरंजन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो मनोरंजन के साधन को आप बदलते स्वरूप को अपने तरीके से चीज़ों को आप लीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन भी ज़रूरी होता है, लेकिन आप ज्ञानवर्धक चीज़ों को देखिए, ऐसी चीज़ों को देखिए जिससे कि आपका पूरा विकास हो, आपके दिमाग का अच्छा, आपको खुद तनाव से मुक्ति मिले और आपको अच्छा महसूस हो, और साथ ही थोड़ा शारीरिक गतिविधि भी रहें, इस तरीके के मनोरंजन के साधन भी करिए, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे खेल हैं उनपे भी आप जा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा
1: आप, कथा कहानी वाली बात बहुत अच्छी बताई आप, वो भी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने ऐसे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं, बैठ के घर में आपस में बात कर सकते हैं, अंताक्षरी जैसे खेल होते थे वो खेल सकते हैं,
0: जिनमें तो कोई अलग से कोई खिलौना नहीं लाना है, बिना खिलौने वाले खेल भी हुआ करते थे। लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि अभी समय है एक अंतराल का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
3: बिल्कुल, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी।
2: अभी बातचीत से पहले हम सुनेंगे।
3: वही देखा चंचल जी की तरफ कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम पहले
2: अभी हम गीत सुनेंगे।
3: चलिए पहले
2: भाई मनोरंजन की बात हो और मनोरंजन में गीत ना हो तो कैसे होगा।
3: आपने

0: तो भाई इस गीत के बाद में अब हम बात करेंगे सखी विशेष में, जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, उनकी जो है यानुंग जामोह लेगो, जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं।
1: बिल्कुल। और यानुंग जामोह लेगो भारत के अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संजोने और लोगों को निस्वार्थ उपचार करने में समर्पित किया है।
0: वो विशेष रूप से कुछ समुदाय हैं उनमें प्रचलित उपचार, पारंपरिक उपचार पद्धतियों की संरक्षक मानी जाती हैं। 1963 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सिका टोड़े गांव में उनका जन्म हुआ और ये वहाँ के समुदाय हैं उनसे ताल्लुक़ रखती हैं।
1: बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा में उनका प्रवेश घर से ही शुरू हुआ था। उन्होंने अपने पिता से जड़ी बूटी चिकित्सा सीखी, जो कि एक सम्मानित लोक चिकित्सक थे। उनके मार्गदर्शन में पौधों के चयन, तैयारी और उपचार और प्रार्थना से संबंधित पारंपरिक रीति रिवाजों का अवलोकन किया और लगभग 15 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 1995 में अपना स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट से बीएससी और एमएससी कृषि की उपाधि प्राप्त की।
0: विश्वविद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1988 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में काम करना शुरू किया और वो लंबे समय तक वरिष्ठ पदों पर रहते हुए 2023 में वहाँ से सेवानिवृत्त हुई और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय पारंपरिक प्रथाओं और सामुदायिक प्रशिक्षण को समर्पित कर दिया। इसके बाद 2009 में उन्होंने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज की स्थापना की, जो औषधीय पौधों और घरेलू स्तर पर जड़ी बूटियों के बागानों की खेती, संरक्षण और शिक्षा देने की पहल है, जिसके माध्यम से पूर्वजों के ज्ञान को व्यवहारिक खेती से जोड़ा गया है।
1: और लेगो के योगदान का एक मुख्य पहलू है पुनर्जीवन और ज्ञान का प्रसार। बुजुर्गों द्वारा ज्ञात जड़ी बूटियों की सूची बनाना, उनकी प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना और नर्सरी एवं रसोई के खेतों में दुर्लभ प्रजातियों की खेती करना।
0: स्वदेशी हर्बल हेरिटेज के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षित किया। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी चिकित्सा के पारिस्थितिक आधार को मजबूत करते हुए

0: उन्होंने प्रतिवर्ष लगभग 5,000 औषधीय पौधों का रोपण करने में भी बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है।
1: और पिछले कई दशकों से यानुंग जमाहुलिगो ने पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग उनसे संपर्क करते रहे, जिनमें पाचन संबंधी और त्वचा संबंधी समस्याओं से लेकर श्वसन संबंधी शिकायतें और गुर्दे की समस्याएं, बहुत सारी चीजें शामिल हैं।
0: और आरती, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, कह सकते हैं कि बड़ी बीमारियां भी हैं उसमें, और उन्हें उनका भी वो उपचार करती हैं। और पद्म पुरस्कार दस्तावेज 10,000 से अधिक लोगों के लाभ का दावा करते हैं। लोग लेगो अक्सर ऐसे विश्वास को व्यक्त करती हैं जो पारंपरिक मूल्यों के अनुरूप हैं, यानी कि वो कहती हैं कि प्रकृति में ही बीमारियों के समाधान भी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात भी है। ये एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जिसे वे पौधों के संरक्षण के संदेश के साथ जोड़ती हैं। लेगो का अभ्यास औषधि पौधों और जड़ी बूटियों के जो अर्क होते हैं उस पर केंद्रित है, जिन्हें काढ़े, पाउडर, पेस्ट या तेल के रूप में तैयार किया जाता है। उनके प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 2007 में सृष्टि सम्मान, 2013 में पारंपरिक वैद्य रत्न और 2019 में अरुणाचल स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।
0: तो बस लोग उनसे इसी तरह से चिकित्सा लाभ लेते रहें और वो बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में इजाफा करती रहें, यही शुभकामना है। सुनते हैं गाना।
2: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में पतंगा फिल्म का गाना था आरती, और हमने एक गाना सुनवाया था अपलम चपलम, और हमने एक दिमागी कसरत या पहेली पूछ ली थी अपने सुनने वालों से कि उस गाने में दो बहनों की आवाज, वो कौन सी दो बहनें हैं। तो बहुत सारे जो गाने हमने बाद में भी सुनाए ना, उनके लिए भी हमारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम कौन सा है, गायक गायिका कौन से हैं, वो सारी जो पूरी जानकारी है वो लेकर भेजी है। लेकिन फिलहाल वो हम बता दें कि वो आज़ाद फिल्म का गीत था, आवाज़ थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। और बात है दिमागी पहेली की,
1: बिल्कुल,
0: तो पहेली जो है वो दिमागी कसरत करवाती है, और दिमागी कसरत के लिए क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी
1: हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो कौन सा आप पहले पढ़ रही हैं संदेश?
0: एक संदेश में लिखा है कि मुझे और मेरी बहन को बचपन से ही नियमित अखबार में आने वाली जो वर्ग पहेली होती थी ना, उन्हें भरने का बड़ा शौक रहा है, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आयु वर्ग के लिए पहेलियाँ लाभदायक होती हैं। कुछ मिनट में पहेलियाँ सुलझाना दिमाग के लिए उतना ही उपयोगी है जितना शरीर के लिए नियमित व्यायाम। हम किसी पहेली का उत्तर खोजते हैं तो हमारा मस्तिष्क तर्क, कल्पना, स्मरण शक्ति और सूझबूझ का एक साथ में उपयोग करता है। ये मानसिक अभ्यास सोचने समझने की क्षमता को निखारता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने कि एक साथ कितनी चीज़ें जुड़ जाती हैं।
1: बिल्कुल। तो और एक हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिखते हैं कि शारीरिक जो शारीरिक कसरतें हैं उनके साथ दिमागी कसरतें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। वैसे हर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर बिस्तर पर हल्की कसरत करने के बाद प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, साथ में रेडियो पर विविध भारती भी सुनता रहता हूँ, दिमागी मनोरंजन रूपी कसरत भी हो जाती है। रही बात पहेलियों की, तो न्यूज़पेपर में हर रोज़ आ रहे क्रॉसवर्ड्स पजल सॉल्व करके टाइम पास करने के साथ साथ दिमागी कसरत भी हो जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियां ही नहीं, मैं जो सखी सहेली और सुरीला सफर प्रोग्राम में कमेंट्स लिखता हूँ उसके लिए भी शब्दों और वाक्यों को सोचता हूँ और उससे मेरी दिमागी कसरत होती है। जो लेखन का कार्य करते हैं बिल्कुल, उनके लिए हर बार नए शब्द चुनना, और जो काव्य गद्य लिखते हैं, क्योंकि एक जैसा ना हो, एक रास्ता ना लगे, हर बार सुनने वालों को पढ़ने वालों को नया लगे, इसके लिए नए शब्दों को सोचना, नई रचनात्मकता लेकर आना अपने लेखन में, ये बहुत बड़ी दिमागी कसरत है।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहेलियां सुलझाना एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम है, ये ना केवल हमारे दिमाग को सक्रिय और चुस्त रखता है बल्कि सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और याददाश्त को भी बढ़ाता है। दिमागी कसरत के कुछ मुख्य फायदे भी हैं, जैसे कि एकाग्रता में सुधार होता है, पहेलियों को समझने और उनका जवाब खोजने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, समस्या सुलझाने का कौशल आता है, ये हमें किसी भी स्थिति में लीक से हटकर सोचने में मदद करती हैं, और साथ ही नए शब्दों और तर्कों का उपयोग करके दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं और नई यादें बनती हैं और कुछ नया और मजेदार भी होता है, इसी हमें तनाव से राहत मिलती है।
0: हमारे श्रोता ने तो बहुत सारी पहेलियां लिखकर भेज दी हैं और अंत में उन पहेलियों के जवाब भी लिखकर भेजे हैं।
1: अच्छा
0: और देखिए एक बड़ा सुंदर संदेश है, पहेलियों के विभिन्न पहलुओं और सुरागों यानी उनके क्लूज को याद रखने से शॉर्ट टर्म मेमोरी मजबूत होती है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है। आगे ये कहना चाहते हैं कि समस्या सुलझाने की क्षमता, पेचीदा सवालों को हल करते समय मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं, एकाग्रता और धैर्य, एक सही उत्तर तक पहुंचने के लिए गहराई से सोचना पड़ता है जिससे फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है।
1: बिल्कुल, और सबने इसी तरह से लिखा है कि पहेलियाँ वास्तव में मस्तिष्क के लिए बेहतरीन दिमागी कसरत है, हमारे श्रोता कहते हैं ये हमारी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और रचनात्मकता को चुनौती देती हैं जिससे मानसिक विकास होता है।
0: तो भाई अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए,
1: एक गीत
0: सुने।

0: आरती तुम सच सच बोलो कि बारिश जब होती है तो कई बार ना चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक चीज है।
1: क्योंकि मैं खाती हूँ ऐसा।
0: हाँ, तुम बहुत चटोरी हो, ये बात पहले भी श्रोताओं के सामने तुम मान चुकी हो कि तुम बड़ी चटोरी हो। और बारिश में भी चटपटा हम देख के, जब हम देखते ना कि तली भुनी चीजें बन रही है, कहीं पकौड़े हैं या कुछ और है, चाट बन
1: रही है, मन नहीं मानता है फिर तो एकदम से।
0: लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इन चीजों को तुम कितना अनदेखा अनसुना करती हो, अपनी नाक कान बंद कर लेती हो।
1: बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं कि बारिश के मौसम में मैं बहुत ही कम, कभी खा लिया अगर पकौड़े खा लिए तो फिर मैं उस दिन बहुत ही हल्का, कभी एक टाइम खाना खाती हूँ वो भी बहुत ही हल्का सा खिचड़ी ले लिया कुछ इस तरीके का, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हैवी जब हो जाता है ना तो वो आपकी परेशानी कर सकता है।
0: बिल्कुल, तो आपको अपच की समस्या इस मौसम में बहुत जल्दी हो सकती है, और आपकी जब पाचन समस्या अगर जवाब दे गई तो वो बहुत सारी समस्याएं एक साथ लेकर आ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि इन दिनों में साफ उबला हुआ पानी पिए या फिर फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए, ताज़ा और गर्म भोजन करें, खुले में जो भी बिकने वाली खाद्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से बचें।
1: बारिश में तो बिल्कुल भी बाहर का ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से बन रहा है, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी है उसके बाद हम गए हैं तो फिर बहुत नहीं बिकते हैं वो सामान, तो किस तरह से हम खा रहे हैं, उसी समय का बना हुआ है, ताज़ा है या बहुत देर का रखा हुआ है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है।
0: और हम सिर्फ खान पान की ही बात क्यों करें, भाई बारिश में कई बार आसपास में पानी जमा हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना गड्ढे जहाँ पानी सूखता ही नहीं है, कुछ ऐसी अगर चीज़ रखी है हमारी छत पर, हमारे आंगन में, गलियारे में, वहाँ पानी भर गया वो सूख नहीं रहा, तो वहाँ मच्छर बहुत जल्दी पनप सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियाँ जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन्हें लेकर आ सकते हैं, तो वहाँ पानी का भराव ना होने दें। और घर में भी मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले जो अन्य साधन हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुँचाएं उनका उपयोग कर सकते हैं। फल सब्जियां जो भी आप बाजार से लेकर आएं उनको धोकर अच्छी तरह सुखाकर फिर उपयोग करें, तो ये सारी सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर हम कहीं से बाहर से भीग गए, भीग कर आएँ तो तुरंत कपड़े बदलें और अच्छे से उसमें हम स्नान करें या कुछ इस तरह की चीज़ें करें, और जिससे कि ना भीगे ना रहें।
0: और बच्चों और बुज़ुर्गों की स्वास्थ्य के लिए ख़ास तौर पर ध्यान रहना देना होता है, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी पावर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसीलिए इसमें इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो मौसम के अनुसार हल्के और पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े भी आप बच्चों को पहना सकते हैं और बुज़ुर्गों के लिए भी इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है ये चीज़ें करनी। और साथ ही हमारे श्रोता भी हैं, वो भी लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य, सुरक्षा और यात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करें, बाहर जाते समय रेनकोट या छाता साथ में रखें, सड़क पर जल भराव और खुले हुए तारों से आप दूर रहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि

0: बारिश होती है उसमें अगर कोई खुला हुए तार पड़े हुए तो बहुत ये जानलेवा भी हो सकता है। तो और भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहन लीजिए और पैरों को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए।
1: हमारे श्रोता ने संदेश में लिखा है कि बारिश के मौसम में हमेशा हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर कर लोग कम पानी पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। भरपूर मात्रा में गुनगुना या फिर साफ पानी पिएं। ताज़ा और सुपाच्य भोजन हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में पाचन शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो बाहर का तला भुना खाने की बजाय खिचड़ी, दलिया, सूप और इस तरह का हल्का भोजन करें।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश

0: बारिश होती है उस समय अगर कोई खुला हुए तार पड़े हुए तो बहुत ये जानलेवा भी हो सकता है। तो और भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहन लीजिए और पैरों को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए।
1: हमारे श्रोता ने संदेश में लिखा है कि बारिश के मौसम में हमेशा हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर कर लोग कम पानी पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। भरपूर मात्रा में गुनगुना या फिर साफ पानी पिएं। ताज़ा और सुपाच्य भोजन हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में पाचन शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, तो बाहर का तला भुना खाने की बजाय खिचड़ी, दलिया, सूप और इस तरह का हल्का भोजन करें।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश के मौसम में नमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उबला हुआ फिल्टर किया हुआ पानी पिएं, और जो खाने जो बाहर सड़क पर बिक रही हैं चीज़ें और जो ढकी हुई नहीं है उनको आप खाने से बचिए, उन्हें मत खाइए। भीगने पर तुरंत सूखे कपड़े पहने और मच्छरों से बचने के लिए किसी चीज़ का आप उपयोग कर सकते हैं।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि बरसात के मौसम में नमी और दूषित पानी के कारण डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और पेट का संक्रमण, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचने के लिए हमेशा उबला हुआ शुद्ध पानी पिएं, स्ट्रीट फूड से बचें। मच्छरों के बचाव के लिए हमेशा घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, और जैसा हमने बताया भी था कि मच्छरदानी भी आप उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगने से बचें, और अगर भीग जाएं तो घर आते ही सादे या गुनगुने पानी से नहा लें और सूखे कपड़े पहने, हाथों को अपने साफ रखें बैक्टीरिया से बचने के लिए, समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें। आंखों के संक्रमण से बचने के लिए, बरसात में अक्सर ऐसा होता है कि आंखों का आना जैसी कंजक्टिवाइटिस जो है वो हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है, तो अपनी आंखों को बार बार छूइए मत और साफ पानी से उन्हें धोइए।
1: बिल्कुल। हमारे सभी श्रोता जो सुन रहे हैं इन संदेशों को, वो बहुत इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले संदेश में लिखा गया है कि बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और हरियाली लेकर आता है। कितनी अच्छी बात लिखी है। लेकिन आगे फिर लिख रहे हैं कि इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। बारिश के दिनों में साफ और ताज़ा भोजन का सेवन करना चाहिए। बाहर के खुले अस्वच्छ पदार्थों से बचना है। उबला स्वच्छ पानी, हाथों की सफाई, इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके। और ये तो बहुत सही बात है कि कपड़े एक बार गीले हो गए और लगातार बारिश है तो उनको सुखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। और नमी वाले कपड़े अगर हम पहने रहेंगे तो शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात का मौसम सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी जैसा होता है, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, इसलिए स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको या परिवार में किसी को भी तेज बुखार, अत्यधिक थकान, उल्टी या दस्त की शिकायत हो तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से आप परामर्श करिए।
1: और अब मुझे लगता है कि हमें एक गीत सुन लेना चाहिए, और ये होगा आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा दीजिए चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को अनुमति नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में फैले हमारे श्रोता जुड़ते हैं विविध भारती से, हमारे इस कार्यक्रम से, और करते हैं अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश। ये कार्यक्रम हम और आपको जुड़ने में एक सेतु का काम करता है और इससे आपका और हमारा जुड़ाव यकीनन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो हमारे पहले कॉलर कौन है, जरा देखते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ, मांगी लाल धाकड़ है।
0: मांगी लाल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छी हैं
1: जी मैम। आपके प्रोग्राम में सुन के बहुत खुश होता हूँ। विविध भारती बम्बई के कार्यक्रम में कम से कम 15-20 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी जी मैम।
0: अच्छा, आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे से मोरों की आवाज आ रही है।
1: जी जी मोर है, मैं अभी खेतता हूँ खेती बाड़ी पर।
0: अच्छा, मतलब आप अपने खेत में बैठकर बात कर रहे हैं और वहाँ पर मोर आते हैं?
1: जी जी मोर आ रहे हैं, मोर बहुत पक्षी हैं, मोर हैं, कोयल हैं, सभी तरह की पक्षी नजर आते हैं हमारे गांव में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगता होगा ना?
1: जी जी मैम, अपनी खेती बाड़ी में मक्का बो रखी है, उसमें यहीं बैठा हूँ मैं, यहीं से बात कर रहा हूँ।
0: तो आपके शहर का या गांव का मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे गुना MP में मौसम मतलब अभी तो बादल हो रहे हैं, पानी भी बरसा था 2-4 दिन पहले।
0: अच्छा,
1: अभी तो अच्छा मौसम है।
0: चलिए, तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा ना?
1: जी नहीं, फसल का नुकसान नहीं है, बारिश की फसल है, मक्का है।

0: कुछ नहीं, नुकसान नहीं है उसमें।
1: तो ज्यादा मोर आते हैं क्या?
0: हाँ बहुत मोर है हमारे गांव में।
1: उनको खेतों में आने से कैसे रोकते हैं आप ताकि फसल को नुकसान नहीं हो?
0: बिल्कुल नहीं रोकते हैं, वो नुकसान नहीं करती हैं भी, थोड़ी बहुत चौकती हैं, चौक के निकल जाती हैं।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
0: और आपके प्रोग्राम में हेलो फरमाइश रहतनामा साकी सहेली और आपकी जो मंच आएगी तो ये पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
1: बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और कार्यक्रमों को सुनते हैं विविध भारती के। आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: आज मुझे बंजारन का गीत है ये जीवन इतनी बार मिले, हर बार मुझे साजन का प्यार मिले।
1: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ, हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी?
1: परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे है, मजों में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता हैं वो इतने नियमित हैं कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनके जिंदगी में और कुछ है ही नहीं।
1: खास तौर से एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, कि देखिए आकाशवाणी एक ऐसी माध्यम है के जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते हैं। रही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनको चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो हैं मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आंखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है

0: आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं, जो बातें उस उम्र में नहीं होनी चाहिए, और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है।
1: हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल में नहीं देना है, और हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे, जैसा आप अलौ सर विविध भारती से बात करते हैं, हमारा देश पूरा आपकी आवाज सुनता है, और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं, जैसा ही प्रोग्राम चलता है तो हम रेडियो लगा के बैठ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है।
0: बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।
1: हम यहाँ पे परभणी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब, कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए, और आपको इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: हमें दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर अंतोनी फिल्म का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे, ये गाना गीत सुनना है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है।

0: अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।
1: तुझको इस महफिल

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी राम स्वरूप रेखवार बोल रहे हैं, ग्राम भगौता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: राम स्वरूप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया है आपकी कृपा से, आप कैसी हैं मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे यहाँ तो

0: चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई, अभी दो तीन दिन से पानी बस नहीं गिरा है।
1: अरे वाह,
0: बादल हो रहे हैं,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
0: जी। गाना सुना दीजिए, फेर जी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
1: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते।
1: मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ। मंदाकिनी जी।
0: जी जी।
1: विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चालना और आपस में मेलजोल होता था बहन जी।
0: जी जी।
1: मेरी उम्र 84 चालू है। अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुप्तगु करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता, या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं।
1: ये मेरा जो शौक है, ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए

0: मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्य वर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए हैं। बहन जी
1: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: फिर प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, भरे भी धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। बहन
1: जी बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए आप सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत को सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं पप्पू चंदेल बोल रहा हूँ भोपाल से।
0: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
1: बढ़िया हूँ।
0: क्या कर रहे हैं इस समय?
1: ड्यूटी पर आ गए हैं, बेकरी में हैं।
0: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
1: जी जी जी।
0: क्या समय है आपके आने का?
1: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक बीच में आ जाते हैं।
0: और रात तक?
1: 9:30 बजे तक।
0: अच्छा, चलिए नौकरी आराम की है ना?
1: जी जी।
0: तो बताइए कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में? बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
1: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकीज है, सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम मतलब बेकरी आइटम जो है।
0: आप भी कुक का काम करते हैं?
1: जी जी, मैं केक बनाता
0: हूँ। अरे वाह, कौन से केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
1: नॉर्मली चलता है पाइन एपल ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं, मतलब वही आदत है। हाँ, लेकिन पाइन एपल जो है वो मतलब हमेशा ही
0: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइन एपल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?

0: बन जाते हैं, मतलब जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 60-70 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही है जैसा चल रहा है।
1: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
0: 20 साल हो गए, 2002 से लगा था।
1: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
0: विधाता पिक्चर का मैम, हाथों की चंद लकड़ियों का, विधाता पिक्चर का।
1: गाने के बोल बताइए।
0: हाथों की चंद लकड़ियों का, ऐसा कुछ।
1: चलिए आपकी पसंद का ही गीत सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी राम राम।
0: नमस्कार, राम राम, कैसे हैं?
1: जी बहुत बढ़िया। मजाक नहीं जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: शहर नहीं, हमारा तो गाँव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान धोन लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले समा पौध बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?
1: मैडम जी बरसात

0: मौके पर महात्मा से अरदास कर रहे हैं और वैसे मौसम अच्छा है।
1: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
0: बिल्कुल जी, अब हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: तकरीबन चावल की गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
1: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है?
0: जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह हम जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
1: ये बात तो खैर सही है।
0: दिन में 3 दफा घेरा लगाना, सुबह शाम दोपहर। क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
1: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
0: नहीं नहीं नहीं जी, 4-5 दिन तक। उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहता। 4-5 महीने पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
1: अच्छा, भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको हम।
0: मैडम जी, क्रांति फिल्म से सुना दो, चना जोर गरम।
1: चलिए, तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। दुनिया

0: स्टैंड बंदा भी लेके लक्ष्य को चाय वाले को ना चाय पी लो दीदी।
1: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
0: चाय की दुकान है दीदी।
1: अरे चाय की दुकान है आपकी?
0: हाँ दीदी।
1: तो पहले नाम बताइए, फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं।
0: लक्ष्मण रेखवाल।
1: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
0: बंडा वेली जिला सागर मध्य प्रदेश।
1: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली है आपने?
0: कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं चाय की दुकान को।
1: अच्छा 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
0: हाँ हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकानें हो गई हैं अब चाय की। और नाश्ता है, और नाश्ता भी आप खाना हो तो केक मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
1: हमारे तो मुँह में पानी आ गया ये सब सुन के, तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
0: हाँ बहुत आते हैं, और चाय ऐसी रहती है कि अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
1: हाँ ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं
0: ऐसा नहीं होता है, साफ होती रहते हैं। और ये हमारी तो चाय रखते ही रहती है, धरी नहीं रहती है।
1: हाँ तो किसमें पिला रहे हैं चाय, कुल्लर में पिला रहे हैं या प्लास्टिक के गिलास में पिला रहे हैं?
0: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है।
1: तो क्या डालते हैं चाय में फटाफट बताइए और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
0: हम चाय बिल्कुल अच्छी बने तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
1: और गर्मी में इलायची।
0: हाँ
1: चलिए कौन सा गीत सुनवाएं आपको बताइए?
0: आज मोहरा पिक्चर है ना कजरे की दाल ना मोतियों की हार, तुम कितनी सुंदर हो।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहती हूँ। मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर के साथ जो लोग रहते हैं ना, तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश है गीत, और जो 3 बजे प्रतिशैली कार्यक्रम आती है ना, तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है।
0: अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह? प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा?
1: हाँ, त्रिपुरा तो खेती रबड़ी खेती है, तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है। तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है, तो इसके लिए पर्यटक आती है, तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है।
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, इसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माया का मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छी है मंदिर, घूमने के लिए बाहर से लोग आते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान?
1: त्रिपुरा में तो बांस की खेती में बहुत अच्छी है, बांस का जो
0: काफी अच्छा सजावटी सामान बनते हैं ना, और हथकरघा का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में।
1: जी जी जी।
0: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का जोरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: आपको बताता हूँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हकाई जुताई होती है और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी मतलब आपको बताऊं 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊं आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं नदियां तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती है दो फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो गर्मी में खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरकता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना, जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी, उसके बाद गेहूं लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं फसल आएगी तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार?
1: जी जैसे तो बीज उपचार करके ही लगाया जाता है और उसके बाद में जब फफूंद होती है कभी कभार तो इल्लियां भी होती है सोयाबीन में, मटर में, लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का, और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
0: अच्छा,
1: और ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप पे आने से हमें आपको बताऊं स्पष्ट प्रसारण मिलता है और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे विद्यार्थी चलता ही रहता है, उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली, हवा महल, सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम, वो सुनते हैं, और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पत्रा वाले जो कार्यक्रम आते था ना विद्यार्थी से जी, उसमें काफी लेटर लिखे।
0: बताइए, इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, आप कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: फिल्म कराने प्यासा सावन और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
0: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का ही।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंडाजनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात हो रही हूँ आपके साथ मेरी।
0: अरे वाह क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवहर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ अच्छे हो, कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप विजय जी, बात तो हुई होगी आपसे।
1: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
0: अच्छा,
1: उम्र अभी 63 है।
0: अच्छा तो समाज के लिए क्या काम करते हैं, विशेष कोई?
1: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजना आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
0: उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई हैं?
1: हाँ, वो बताने का, वो उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का,
0: फिर उनकी उनकी मदद करते हैं। हाँ हाँ ठीक है।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया आ रहे हैं दीदी। सभी सखी सहेली, हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, गीत माला, सभी सदाबहार नगमे, अभी जो शुरू हो गए ना वो मन क्या है गीत, वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
0: उसके लिए आपने लिखा कोई खत? हमें
1: खत मैं लिखने, मैं ब्लैंड हूँ दीदी।
0: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
1: हाँ सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है। मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी, हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी यहाँ पास में है, वो भी सुनता हूँ। उसके बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है जी।
0: वो सभी कार्यक्रम
1: मैं AM पर सुनता हूँ, विविध भारती का कार्यक्रम जो हमारे राजकोट, अहमदाबाद, बड़ोदरा, उसके पर सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं?
1: ओ बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस समय आने वाला है।
1: दो रेडियो मेरे पास है, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दीदी, और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे, वो लेके सुनता था।
0: वो अभी भी आपके पास है?
1: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े रेडियो, अपर्णा के 2 रेडियो है मेरे पास अभी।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममता जी और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
0: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ।

0: साथ में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो जो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मंदाकिनी दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: मैं बडनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: हिम्मत जी स्वागत है आपका।
1: कैसे दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, अच्छी बात है।

0: जी
1: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं?
0: मैं बडनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
1: हिम्मत जी स्वागत है आपका।
0: कैसे दीदी आप?
1: अच्छे हैं, आप बताइए।
0: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
1: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
0: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
1: अच्छा, जैसे
0: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ दीदी मजदूरी।
1: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुंच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
0: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
1: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
0: हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
1: तो बताइए आप वहाँ काम करते हैं, फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
0: अमरावती स्टेशन पे FM लगा हुआ रहता है, वो साइट पर सब मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विद भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
1: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
0: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा 1 घंटे के लिए।
1: अच्छा, बताइए आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दूँ तो की बात राज रहने दो।
1: अच्छा,
0: इशारों को इशारों में।
1: हाँ, ये कव्वाली है।
0: हाँ, मोहम्मद रफी साहब है
1: और आशा भोसले की आवाज में।
0: आशा भोसले और बिंदु और प्रांत के ऊपर फिल्म आएगी, फिल्म कव्वाली दीदी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कव्वाली है।
0: और रेखा और नवीन निश्चल इसमें अभिनेता थे, हीरोइन थी।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की है कव्वाली।

0: सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222-8867-02-88-0224-00-2462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग

0: एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्रमां गुजरातने नेतृत्व अपावे छे। वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदीना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्पने साकार करतुं आधुनिक विश्वनुं प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी। आ वैश्विक हबने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटीनी मुलाकात। अहीं निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्सना प्रगति कार्यनी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक में रजू थई भविष्यनी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमा माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्युं। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरातना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्युं छे नवा भारतना आर्थिक उत्थाननुं प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाणनुं केन्द्र स्थान।
1: हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: सुरली सांझ कार्यक्रम में हवे पछीनी रचना अविनाश व्यासनी, स्वर जय श्री श्रीरामनो।

0: एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्र मा गुजरात ने नेतृत्व पावे छे। वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतुं आधुनिक विश्व नु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी आ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहियां निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मा रजू थई भविष्य नी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमा माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्यु। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरात ना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्यु छे नवा भारत ना आर्थिक उत्थान नु प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाण नु केंद्र स्थान।
1: सखी सहेली दर मंगलवारे अने शुक्रवारे बपोरे 3 वागे प्रायोजक देवदर्शन धूप अगरबत्ती।
2: આપે ટ્યુન કર્યું છે 96.7 FM વિદ ભારતી, દેશની સુરીલી ધડકન, અને સાંભળી રહ્યા છો કાર્યક્રમ સુરીલા સફર. કાર્યક્રમમાં હવે સાંભળીએ

0: एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्रमा गुजरात ने नेतृत्व अपावे छे। वडा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतु आधुनिक विश्व नु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी आ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहियां निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मां रजू थई भविष्यनी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमां माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्युं। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरात ना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्युं छे नवा भारत ना आर्थिक उत्थान नुं प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाण नुं केन्द्र स्थान।
1: 96.7 FM સાથે આપ જોડાયેલા છો અને સાંભળી રહ્યા છો કાર્યક્રમ સુરીલા સફર। કાર્યક્રમમાં હવે સાંભળીશું ફિલ્મ શક્તિનું આ ગીત કિશોર કુમાર અને લતા મંગેશકરના અવાજોમાં।

0: अभी आपने लक्ष्य फिल्म में शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन और रूप कुमार राठौर को सुना। संगीत शंकर एहसान लॉय का था, रचनाकार थे जावेद अख्तर। अब सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

अभी आपने बिंजू अली और हेमा सरदेसाई को फिल्म गूंज में सुना। संगीत बिंदु का था, बोल रविंदर जैन के। जयमाला कार्यक्रम में अब लेते

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी फौजी भाइयों का स्वागत है। लीजिए सुनिए सातवां स्वान फिल्म में लता मंगेशकर और उदित नारायण को, संगीत राम लक्ष्मण का, बोल सूरज सनीम के।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया राज हाथ, इस फिल्म का गीत, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए जाबाज फिल्म का गाना किशोर कुमार और सपना अवस्थी की आवाजों में। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मेरे आएंगे चॉकलेट खूब लाएंगे। घर अभी वो आएंगे, मैं उनसे खेलूं।

જરા વિચારો, ઘેર તમારી કોઈ રાહ જોઈ રહ્યું છે.

एक छे। जिंद सोनीपत सेक्शन पर आ ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति कलाक नी झड़पे दौड़ से। ग्रीन हाइड्रोजन नो उपयोग कोलसा जेवा अश्मीभूत ईंधण माथी उत्पन्न थती वीजळी पर निर्भरता घटाड़ से। वधुमां ते पर्यावरण नु रक्षण करशे अने देश ने स्वच्छ परिवहन तरफ आगळ वधवामां मदद करशे। आ ट्रेन नी शरूआत साथे भारत पसंदगी ना देशो जर्मनी, जापान, चीन अने अमेरिका नी यादी मां जोड़ाशे, जे रेलवे मां स्वच्छ अने हरियाली टेक्नोलॉजी माटे हाइड्रोजन नो उपयोग करी रह्या छे। दीपेंद्र कुमार ना अहेवाल साथे अजय इंद्रेकर, आकाशवाणी समाचार, अमदावाद।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए अशोक कुमार शांति की लिखी हास्य नाटिका चोर देवता।
1: कौन है भाई इतनी रात में दरवाजा खटखटा रहा है?
2: दरवाजा खोलो, हम चोर हैं और तुम्हारे घर चोरी करने आए
3: हैं। अरे क्यों मजाक करते हो, वो भी आधी रात में।
2: दरवाजा खोलते हो या दरवाजा तोड़ दिया जाए मजाक मजाक में।
4: लगता है चोर ही है।
2: दरवाजा खोलते हो अथवा?
5: सरदार लगता है ये लोग शराफत से दरवाजा खोलने वाले नहीं हैं।
2: सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा।
5: तो सरदार उंगली टेढ़ी कर दो।
2: जग्गा उंगली ही टेढ़ी नहीं, पूरा हाथ ही टेढ़ा करना पड़ेगा। तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो।
5: अरे भगवान अब क्या करें, ये तो दरवाजे को ही तोड़े डाल रहे हैं।
6: पापा पूरे 2000 का दरवाजा है, चोर तोड़ डालेंगे। पापा खोल क्यों नहीं देते, कम से कम दरवाजा तो सही सलामत बच जाएगा।
7: भगवान मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पड़ोसियों के घर में भी जल्दी से चोरी हो और मैं भी इसी प्रकार चुपचाप उनके घर चोरी होती देख सकूं।
5: अरे भगवान पर भरोसा रखो भाग्यवान, भगवान पर भरोसा रखो ऐसा ही होगा। तो सुनो मैं दरवाजा खोलता हूँ।
2: खबरदार खबरदार सब लोग घर का एक कोना में खड़ा हो जाओ। चलो चलो जल्दी करो, अपन देरी करना नहीं मांगता, समझा क्या?
6: क्यों खड़े हो जाए कोने में? हमने इतना रुपया लगाकर ये मकान बनाया है, क्या इसलिए कि एक दिन हमें कोने में खड़ा होना पड़ेगा, वो भी अपने घर में?
2: ऐ छोटी सी गुड़िया, आफत की तू लगती है पुड़िया। देखो लड़की हम कोई लफड़ा करना नहीं मांगता।
8: लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनकी तो ठुकाई करनी पड़ेगी। हाँ
2: नहीं नहीं बिल्ला, हम अहिंसावादी है, हिंसा हमें पसंद नहीं। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इन्हें गोली मारना मांगता हूँ। बस सभी खबरदार, कोई हिंसा नहीं फैलाएगा, हिंसा फैलाने वाले को गोली मार दी जाएगी। सब लोग समझा क्या?
5: नहीं सरदार, हम सब कोने में खड़े होते हैं, तुम गोली नहीं चलाना। आओ कोने में आओ।
2: लगता है ये लोग भी अहिंसावादी है। अच्छे बच्चों की तरह सब एक साथ खड़े हो जाओ। चलो चलो खड़े हो जाओ। और अलमारी की चाबियां हमें देना मांगता। चलो लाओ, इधर लाओ।
9: सरदार सरदार, घर की औरतें तो बिल्कुल गहनों से लदी पड़ी है।
2: जग्गा जग्गा, तुमको हमारा वसूल नहीं मालूम?
9: सरदार
2: हम औरतों के पहने हुए गहने नहीं उतारते, ये हमारी माँ बहन जैसी है।
9: सरदार गलती हो गई। सरदार
2: गलती हो गई,
9: माफ कर दो सरदार।
6: सरदार जी क्या हम अपने रखे हुए गहने पहन ले?
2: बीबी तुम क्या बोलता है, हम सिर्फ पहने हुए गहने नहीं उतारते और अलमारी में रखे हुए गहने नहीं छोड़ते। क्या अपन को बेवकूफ नहीं समझना, हमारा नाम खूंखार सिंह है। और बीबी कान खोल कर सुन लो, मुझे हिंसा पसंद नहीं और हिंसा करने वाले को हम गोली मारता है। क्या
5: दादार? गोली मार दूं क्या?
6: नहीं नहीं गोली नहीं मारना, मैं समझ गई, सब समझ गई भैया।
2: चलो जल्दी से अलमारी का चाबी मारे हवाले करना मांगता। क्या चलो दो।
9: सरदार लगता है कि काफी मोटी मुर्गी है।

0: इतना गहना तो इन औरतों नहीं पहन रखा है सरदार, तो अलमारी में कितना गहना रखा होगा।
1: ठीक है था जग्गा, जल्दी से चाबी लेकर अलमारी की तलाशी लेना शुरू कर दो।
2: अभी लेता हूं।
1: और हाँ हाँ जग्गा, तुम लोग ध्यान रखना, सिर्फ जेवर और नकदी ही निकालना।
3: पर सरदार, सिर्फ जेवर और नकदी ही क्यों, घड़ी रेडियो आदि क्यों नहीं?
1: ओ बेवकूफ, अगर हम जेवर और पैसे ही निकालेगा तो पुलिस अगर कभी हमको बाद में पकड़ना मांगता तो वो हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं मिलेगा, समझा क्या? इस तरकीब से हम लोग बचेगा, हमें पुलिस वाला ने ये सब तरकीब सिखाया।
3: समझ गया सरदार, समझ गया।
0: अरे सरदार, अभी नया नया हूं ना,
3: धीरे धीरे सब समझ जाऊंगा।
1: साहब तुम सुनो, चाबी लाओ, लाओ, हमको देरी करना नहीं मानता क्या?
3: चाबी चाबी मेरे पास नहीं है, चाबी तो मेरी धर्म पत्नी के पास है, क्योंकि घर के वित्त मंत्रालय का काम तो वही देखती है।
1: बीबी चुपचाप चाबी मुझे दे दो, मुझे हिंसा पसंद नहीं, हिंसा करने वाले को मैं गोली मार देता, समझी क्या? नहीं तो
4: नहीं नहीं चोर जी, मैं चाबी देती हूँ, पर कृपा करके किसी को गोली मत मारना। लीजिए चाबी, लीजिए।
1: हाँ जग्गा,
2: ये
1: ले चाबी, और अगर अलमारी का लॉकर नहीं खुले तो तोड़ डालना, जल्दी करना मांगता। अभी और भी कई घरों में अपॉइंटमेंट है अपना।
2: सरदार मैं अभी खोलता हूँ।
3: अरे जग्गा जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो आसपास के लोग जाग जाए।
1: अरे कोई नहीं जागेगा, अगर जाग भी गया तो वो सोने का ही नाटक करेगा, समझा क्या?
3: ठीक कहते हो सरदार, आज का आदमी काफी मतलब परस्त हो गया है, दूसरों के बारे में उसे कोई चिंता ही नहीं है।
1: इसीलिए आप उनका काम आसान हो गया, समझा क्या?
3: सरदार बस अब तो हमारे काम में एक ही रोड़ा है, और वो है पुलिस।
1: आप बेवकूफ, अभी तू नया नया है।
5: सरदार लगता है ज्यादा माल नहीं मिलेगा।
1: क्यों?
0: बस ये 3-4 गहने हैं और 1,000 रुपए हैं सरदार।
1: तो लगता है सिर्फ दिखावा ही करते हैं ये लोग।
3: सरदार अरे हम नौकरी पेशा आदमी के पास जेवर पैसा कहाँ रखा है? इन औरतों ने जो गहने पहने हैं ये सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है।
1: तो हमारे मुखबिर ने हमको झूठी खबर दी कि इस घर में मोटी असामी है।
5: सब दिखावटी है सरदार।
1: ए जगा बिल्ला,
2: जी सर,
1: पासा,
2: जी सर,
1: चलो जो भी हाथ लगे समेट लो, जो भी हाथ लगे ले लो। आज बोहनी अच्छी नहीं हुई, सारी रात बेकार जाएगी, समझा क्या?
4: मम्मी मुझे कल कॉलेज की फीस जमा करनी है, प्लीज मम्मी चोरों से मेरी कॉलेज की फीस मांग लो, मम्मी प्लीज।
1: लड़के ये क्या ड्रामा करता है, तुम रोता क्यों?
4: कुछ नहीं कुंकार सिंह जी, आप तो चोर हैं, आपको किसी के रोने से क्या?
1: नहीं नहीं अपन जान ना मांगता, समझा क्या?
3: चोरों के सरदार जी मैं बताता हूँ, ये मेरी बेटी को कल कॉलेज की फीस जमा करनी है।
1: ओहो ये बात है। ओए जग्गे,
5: जी सरदार,
1: उन पैसों में से 1 रुपए इस बहन को देना मांगता क्या?
0: मगर सरदार रुपए तो कुल 1,000 है।
1: जगह जो कह दिया वो कह दिया, समझा क्या?
0: ठीक है ठीक है। ये लो बैग।
4: चोर भैया चोर भैया, मामा जी ने मेरी शादी के लिए कुछ जेवर बनवाए थे जिन्हें आप ले जा रहे हैं। मामा जी अब मेरी शादी में भात की रस्म कैसे निभाएंगे? चोर भैया मेरी मामा जी की कितनी बदनामी होगी।
1: ओहो उठो बहन उठो, तुमने मुझे भाई कहा, अपुन भी तुमको बहन कहना मांगता। जगा
5: जी सरदार,
1: ये गहने बहन के लिए हैं, इन्हें लौटा दो।
0: मगर सरदार ये तो बहनी है।
1: ओ जगा ये हमारा हुक्म है, समझा क्या?
5: पर सरदार
1: आप उनको हिंसा पसंद नहीं, हिंसा करने वाले को मैं गोली मार देता, समझा क्या?
0: जो आज्ञा सरदार। लड़की ले ले ये कहने ले। सरदार सरदार अगर लूटा हुआ माल हम इसी तरह लूटाते रहे ना तो जल्दी हम भीख मांगने लगेंगे।
1: चिंता नहीं करने का जग्गा, अभी दुनिया

0: गरीबों को सताकर अपना तिजोरी भरने वालों की संख्या बहुत है। उसकी तिजोरी हमारा इंतजार करना मांगती, समझा क्या?
1: चोर सरदार जी, मेरी भी व्यथा सुन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी।
0: तो क्या कहना मांगता, घर का मालिक का नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा?
1: बड़ी कृपा। बात यह है ना चोर जी, कि मुझे पैसे चुकता करने हैं।
0: तो
1: वो बात ऐसी है ना कि पैसे तो आप ले जा रहे हैं, फिर
2: चोर भैया इन्हें पैसे मत देना। मगर चोर भैया, मुझे अपनी घर गृहस्थी का सामान लाना है, उसके लिए पैसे मिल जाते तो मैं तुम्हारे लिए अगले डाके के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी कि डाकू खूंखार सिंह को अगले डाके में ढेर सारा सामान मिले। अगर भैया तुमने पैसे नहीं दिए तो सारे महीने हमें भूखो मरना पड़ेगा।
0: हाँ, क्या कहा? इन पैसों की वजह से सारे महीने तुम लोग भूखा मरेगा? ऐ जग्गा, बाकी पैसा भी इनको लौटा दो। आप उन किसी का दिल नहीं दुखाना मांगता।
3: पर सरदार,
0: आप उन कुछ नहीं सुनता।
3: ठीक है सरदार,
0: इनको पैसा लौटा दो। ऐ बीबी, ओ बाबू,
1: जी
0: अपन तुमसे माफी मांगता है, आप उनको माफी कर दो। जगा,
3: जी सरदार,
0: बीबी को पैसा लौटा दो।
1: और पतली गली से आप खिसकना मांगता, समझा क्या?
2: नहीं चोर भैया, तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। कम से कम एक कप चाय तो पीनी ही पड़ेगी।
1: एक कप चाय, एक कप।
0: ओ नहीं बीबी, नहीं, इस चाय तो अपन जरूर पिएगा, पर इस वक्त नहीं, दिन का उजाला में पिएगा। अच्छा बाबू, अपन चलता है जगह। चलो।
2: नहीं देवता,
1: ये नींद में क्या बड़बड़ा रही हूँ? अरे कौन चोर देवता है?
2: तो क्या मैं सपना देख रही थी? ओ हाँ, सपना ही देख रही थी। तभी मैं कहूँ कि चोर इतना दयालु कैसे था? चोर देवता तो सिर्फ सपनों में ही मिल सकते हैं। कलयुग में चोर देवता कहाँ मिलेंगे?
4: तो ये थी हास्य नाटिका चोर देवता। इसके लेखक अशोक कुमार शांत, निर्देशित किया कमल दत्त ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: घरे आएंगे चॉकलेट खूब लाएंगे। घर अभी वो आएंगे,
1: मैं उनसे खेलूंगी।

एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्र मां गुजरात ने नेतृत्व पावे छे। वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतुं आधुनिक विश्व नु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी अ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहिया निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मां रजू थई भविष्यनी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमां माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्युं। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरात ना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्युं छे नवा भारत ना आर्थिक उत्थान नुं प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाण नुं केन्द्र स्थान।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए। चालो घर अने ऑफिस मा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए। बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए। जलाशयों मा कांप दूर करिए। वधु ने वधु वृक्षों वाविए। चालो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
2: कार्यक्रम चित्रलोकमां प्रस्तुत छे यारियां टू फिल्मों आ गीत, विशाल मिश्रा, नीति मोहन अने मनन भारद्वाजना स्वरमां।

एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्रमा गुजरात ने नेतृत्व अपावे छे। वडा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतु आधुनिक विश्व नु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी आ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहियां निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मां रजू थई भविष्यनी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमां माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्युं। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरात ना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्युं छे नवा भारत ना आर्थिक उत्थान नुं प्रतीक।

0: एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्र मा गुजरात ने नेतृत्व अपावे छे। वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतुं आधुनिक विश्व नु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी आ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहियां निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मां रजू थई भविष्यनी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमां माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्युं। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरातना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्युं छे नवा भारतना आर्थिक उत्थाननुं प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाणनुं केन्द्र स्थान।
1: ચિત્રલોક કાર્યક્રમમાં આપના માટે ખાસ પ્રસ્તુત છે ફિલ્મ ફરાઝનું આ ગીત, સ્વર વિદ્યા ગોપાલ।

0: एक विजन जे वैश्विक अर्थतंत्रमा गुजरात ने नेतृत्व अपावे छे, वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी ना विकसित भारत एट 2047 ना संकल्प ने साकार करतुं आधुनिक विश्वनु प्रवेश द्वार एटले गिफ्ट सिटी आ वैश्विक हब ने रॉकेट गति आपवा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेले लीधी गिफ्ट सिटी नी मुलाकात। अहियां निर्माणाधीन कमर्शियल तथा माळखाकीय विकास प्रोजेक्ट्स ना प्रगति कार्य नी थई समीक्षा। एक उच्च स्तरीय बैठक मा रजू थई भविष्य नी ब्लूप्रिंट स्ट्रेटेजिक रोडमैप 2030 जेमा माननीय मुख्यमंत्री श्रीए बिजनेस ग्रोथ अने ग्लोबल कनेक्टिविटी जाळवी राखवा पर सूचन कर्यु। वैश्विक स्तरे अग्रेसर गुजरात ना संकल्प साथे गिफ्ट सिटी बनी रह्यु छे नवा भारत ना आर्थिक उत्थान नु प्रतीक। गिफ्ट सिटी वैश्विक रोकाण नु केंद्र स्थान।
1: આપ જોડાયેલા છો 96.7 FM વિવિધ ભારતી સાથે અને કાર્યક્રમ માણી રહ્યા છો ચિત્રલોક। કાર્યક્રમની અંતિમ પેશકશ ફિલ્મ વિક્રમ વેધા, સ્વર વિશાલ શેખર અને શેખર રવિજિયાની।

0: मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनों से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
3: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
4: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जाँच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमे कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
5: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी डीजे और छेरा पहरा की पवित्र रस्म में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री

0: मनसा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी

0: रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर-23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर-19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर-19 और अंडर-23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए युगल गीत से। वो लिखे हैं गुलजार ने, संगीत तैयार किया है खयाम ने। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

तुम्हारी कसम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में। संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म का नाम महबूबा।

बदलते रिश्ते। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए सुनिए आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडकर की, फिल्म का नाम बेमिसाल।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में सुना। संगीत तैयार किया था आरडी बर्मन ने, बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

मेरे आएंगे चॉकलेट खूब लाएंगे। घर अभी वो आएंगे, मैं उनसे खेल

पापा मेरे आएंगे, चॉकलेट खूब लाएंगे। घर अभी वो आएंगे, मैं उनसे खेलूंगी।

જરા વિચારો, ઘેર તમારી કોઈ રાહ જોઈ રહ્યું છે.

रास्ते अब सीधे नहीं रहे, जैसे किसी ने मोड़कर सपनों की दिशा बदल दी हो। कदम बढ़ते हैं, पर हर कदम पर एक अदृश्य बंधन सा महसूस होता है। आजादी और जकड़न के बीच दिल झूलता रहता है। नींद में भी ख्वाब डर कर सिमट जाते हैं। सीने में कोई टूटी हुई खामोशी चुभती रहती है, और फिर भी सांसों की डोर किसी उम्मीद से बंधी रहती है।

बिजली की चमक में जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता है, पर बरसात सब शब्द भिगा देती है। भीगी हवाओं में तेरा एहसास यूं उतर आता है जैसे तू पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा हो। हर बूंद दिल पर दस्तक देती है और मन बस तुझसे मिलने की जिद कर बैठता है। ये मौसम नहीं, कोई अधूरी चाहत सी लगती है जो बाहों में सिमट जाना चाहती है। कांपती ठंड में भी दिल की गर्मी तुझे पुकारती है जैसे बस एक आलिंगन बाकी हो। और मैं इस बरसात में बस इतना चाहती हूँ कि तू पास आकर मुझे थाम ले।

पलकें जब भी झुकती हैं तो भीतर एक छवि जगमगा उठती है, जैसे कोई दीपक स्वयं जल उठा हो। लज्जा भी अब श्रृंगार बनकर चेहरे पर ठहर जाती है और हर धड़कन में उसका ही स्पंदन बस जाता है। हवाओं में भी अब उसकी आहट सी महसूस होती है, जैसे प्रकृति भी उसी की बात कर रही हो। हर खामोशी अब कुछ कहने लगी है और हर एहसास में उसका ही रंग घुला हुआ है। मेरे नयन रूपी दर्पण में अब बस साजन बसा हुआ है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। हाथों में उसका हाथ आते ही जैसे सारी दुनिया थम गई, खुशी इतनी कि शब्द भी अब साथ नहीं।

नहीं दे पा रहे थे। दिल हल्का होकर आसमान में उड़ने लगा, मानो जमीन का सहारा ही छूट गया हो। हर कदम पर एक अजीब सी उलझन है, जैसे चलना भी अब मुस्कुराने लगा हो। आंखों में चमक है, होठों पर खामोशी, और मैं उसे थामे हुए इस खुशी में बहती जा रही हूँ।

फूलों की खुशबू भी आज कुछ और ही रंग लिए हुए है, जैसे प्यार ने उन्हें भी सजा दिया हो। हर कली में छुपा एक नाजुक सा एहसास है जो दिल के बहुत करीब उतरता चला जाता है। गुलाब की पंखुड़ियां भी जैसे किसी मुलाकात की कहानी सुनाती हो। हवाओं में बिखरी ये महक मन को धीरे धीरे उसके नाम से भर देती है। हर फूल अब एक संदेश बन गया है जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है, और मैं उन फूलों में भी सिर्फ तुम्हारे प्यार की ही छाया देखती हूँ।

जीवन की धूप जब तपती है तो तू ही वो ठंडी छांव बन जाता है। हर मुश्किल रास्ते पर तेरा साथ जैसे थके पांव को सहारा मिल जाता है। तेरी मौजूदगी में हर दर्द हल्का सा लगने लगता है, जैसे अंधेरा भी रोशनी से डरने लगे। मैं जब भी बिखरने लगती हूँ तो मुझे फिर से समेट लेता है। तेरी मुस्कान मेरी दुनिया का सुकून बन जाती है, जैसे सब कुछ ठहर गया हो और मैं समझ जाती हूँ कि मेरी जिंदगी की धूप में सिर्फ तू ही मेरी छाया है।

0: आज के छाया गीत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: देखो टर्मरिक

0: આપ એટ્યુન કર્યું છે 96.1 FM વિવિધ ભારતી. શ્રોતા મિત્રો, સ્ટુડિયો ક્લોકમાં 11 વાગવા જઈ રહ્યા છે. સૌપ્રથમ સાંભળીશું હિન્દીમાં સમાચાર, ત્યારબાદ અંગ્રેજીમાં સમાચાર.
1: આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં વૈષ્ણવી. भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है. श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है. इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं. 2015 में ये मात्र 19% था. उन्होंने कहा कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है. सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है. नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे. पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है. इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान

0: जापान, चीन और अमेरिका की समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
3: India's hydrogen train features a 10 coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen.